FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 44 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब प्रारंभ होती है।

FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।

0: कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं समूह स्वरों में इस देश वंदना के साथ।

समस्वर में ये देश वंदना अभी आपने सुनी, और अब लीजिए सुनिए हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

हरिओम। शरण और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी, और अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह का गाया ये भजन।

0: राजेश डेविड के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम आराधना का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बात। विषय है खरीफ में बैंगन की उन्नत खेती। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। खरीफ के मौसम लखिया गए है।

0: अइसन म किसान भाई मन आनी बानी के खेती किसानी म उतर जाते। मुख्य फसल तो ए क्षेत्र म धान के लेते, फिर साग सब्जी घलो जरूरी है। आज हम बात करबो भाटा माने बैगन के बढ़िया खेती कौन ढंग से करे जाए खरीफ के मौसम में। साग सब्जी लेवैया किसान मन पर भाटा एक प्रमुख फसल है। भाटा बढ़िया ढंग से हमन ग्राफ्टेड ढंग से भी लगा सकत हन, जेखर से उन्नत खेती करके हमन लाभ कमा सकत हन। भूमि के चुनाव के बात करी, वृहत रूप से भूमि के चयन में विशेष ध्यान दिए जाते। ऐसा स्थल के चयन करे जाते जौन हल्का से मध्यम श्रेणी के हो और जेमा जल निकास के उत्तम व्यवस्था हो। पीएच मान के बात करी, 5.5 ले लगभग 6.5 के बीच रहे। भूया की तैयारी के बात करी, पौध रोपण के लगभग 1 हफ्ता पहली खेत के तैयारी के कार्य हमनला शुरू कर देना चाहिए। खेत में लगभग जतका जिखर तिर बनाए उतका ज़्यादा से ज़्यादा गोबर के सरे हुए खाद, फास्फेट और पोटास के पूरा और नत्रजन के आधा मात्रा के भुरकाव पहली से करके बढ़िया जुताई कर देवे और खेतला समतल बनाए के व्यवस्था कर लेवे। अब बात करबो भाटा के बढ़िया बढ़िया उन्नत किस्म के। देश भर में भाटा के दर्जन किस्म हावे। बढ़िया किस्म के बात करी, जवाहर बैगन 64 और 15, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, पूसा क्रांति, काशी तरु, काशी संदेश, काशी कोमल और काशी प्रकाश। अर्का में बात करी, अर्का केसन, अर्का कुसुमकर, अर्का नवनीत, अर्का सील, अर्का सिरिस, ये सब बढ़िया सुघर किस्म हैं। हम क्षेत्र के अनुसार भी तीर्थखार के जिन किसान भाई मन लेते हैं उखरों से पूछ के ऐसा व्यवस्था करके हम लगा सकते हैं। तीर्थखार में ऐसा बड़े बड़े फार्म होते हैं जिहाँ ले हम ग्राफ्टेड भाटा ला भी ला के व्यवस्था कर सकते हैं, जौन हमन ला बछर भर फसल देते। फसल चक्र के बात करी, फसल चक्रा अपना के हम रोग और कीट ला नियंत्रित कर सकते हैं। एखर बर अगर हम बात करी तो रबी माँ, जायद माँ, खरीफ माँ, 3 आप मतलब श्रेणी बताबू, मटर, भाटा, भिंडी, भाटा, बरबट्टी, मिर्चा और भाटा, भिंडी, बरबट्टी या भाटा ले सकते हैं। अब बात आते बीज के मात्रा। आनी बानी किस्म ला लेके हम बीज के मात्रा तय तो वैसे कुमन करे रही थे, लेकिन आधा किलो से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत हमन ला पर थे। लगाए के समय भाटा ला वैसे तो साल भर में 2 पैत लगाए जाते, पहली बरसात के फसल जुलाई अगस्त में रोपण होते और गर्मी के फसल जनवरी फरवरी में रोपण कहे गए। फिर आज हमन खरीफ के बात करथन तो अभी ले तैयारी कर दिया तो जुलाई अगस्त के समय आप मन रोपण कर सका था। रोपिणी तैयार करे बर मुख्य खेत में रोपाई के लगभग 1 से 2 महीना पहली बीज के पौधशाला में बुआई करना जरूरी है। बढ़िया खर पतवार रहित खुला जगह जिहाँ सूर्य के प्रकाश पहुँचते वहाँ क्यारी बना के एला लगा सकत हन। उच्च क्यारी रहे, पानी ज़्यादा भरे झन रहे। कोनो भी बीज ला बुआई से पहली हमला बीजा उपचार जरूरी है। एखर बर जेन भी आप मल्ला फपूंदी नाशक मिलते ओखर से बीज उपचार कर सकत हन। ओखर बाद हम बाद में मुख्य खेत में एला रोपाई कर सकत हन। तो किसान भाई हो, आगू हम अपन ला एकर उर्वरक के मात्रा ला बता दी। लगभग प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल गोबर के खाद, 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 50 किलो पोटास की जरूरत होते। नत्रजन के मात्रा ला बारी बारी से हमन ला समय समय में देत रहना है। आगू एकर किरवा बीमारी के बात ला आप मन ला बताबो। तब तक राम राम, जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात अभी हम प्रसारित कर रहे थे। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय था खरीफ में बैंगन की उन्नत खेती। वाचन स्वर था अभिनव गौरहा का। प्रातः के 6:35 हुए हैं श्रोताओं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरितमानस गान। गायन स्वर सुरेश वाडेकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

कार्यक्रम रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायन स्वर सुरेश वाडेकर का था, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। प्रातः के 6:45 हुए हैं श्रोताओं, और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

0: आज का विषय है सिर्फ उपदेशक ना बने, अमल में लाएं। आलेख है श्रीमती कामनी माथुर का।
1: स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम मन्यथा सुतप्तर्माय पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। कहा गया है उपदेश से ही कोई किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, भली भांति गर्म किया हुआ पानी भी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। तो सिर्फ उपदेश को प्राणी के स्वभाव परिवर्तन का पैमाना कैसे मान लिया जाए? उपदेश कभी कभी तो उपदेशक के मुख से कितना निरर्थक और व्यर्थ लगने लगता है, साफ झलकने लगता है उसके शब्दों का आडंबर, क्योंकि उपदेशक को स्वयं भी तो उन सब पर अमल करना चाहिए ना। हमारे एक परिचित बेहद फिजूल खर्ची हैं, पर गाहे बगाहे वे बचत पर अपना भाषण देने से चूकते नहीं। सब जानते हैं, समझते हैं उनकी बातों की सतही गंभीरता को। खुद कर्ज में डूबकर बचत का संदेश देने पर उनके मित्रगण उनका मजाक बनाने से भी नहीं चूकते। गांधी जी का जिक्र इस संदर्भ में निश्चित ही बड़ी प्रेरणा देने वाला होगा। एक बार उनके आश्रम में अपने बच्चे के साथ एक पति पत्नी आए। उन दोनों ने बापू के सामने अपनी एक छोटी सी समस्या रखी। उनकी समस्या थी उनका बेटा बहुत ज्यादा मीठा खाता था। मीठे की चाह में वो बच्चा अनाज और अन्य खाने पीने की वस्तुओं में रुचि नहीं दिखाता था। माता पिता बच्चे की इस आदत से परेशान थे और चाहते थे कि बापू उस बच्चे को समझाएं तो वो संभवतः इस गलत आदत को छोड़ देगा। बापू ने बड़े ध्यान से माता पिता की समस्या को सुना, बच्चे से भी दो चार बातें की और ये कहकर विदा कर दिया कि ठीक है, हफ्ते भर बाद आना, तब मैं आपके बच्चे को कुछ समझाऊंगा। माता पिता बेमन से अपने बच्चे के साथ लौट गए। पुनः हफ्ते भर बाद बापू के पास मिलने चले आए। बापू ने बच्चे से बात की, उसे मीठा कम खाने के लिए समझाया। विदा लेते हुए पति पत्नी ने सकुचाते हुए बापू से पूछा, बापू यही बात आप पिछली बार भी बच्चे से कह सकते थे, फिर आपने हमें दोबारा क्यों बुलाया? बापू मुस्कुराए और अपने नटखट अंदाज में जवाब दिया, अरे पहले मैं तो अपने आप को सुधार लेता, तभी तो इस बच्चे को समझाने का हक रखूंगा। दरअसल इस पूरे हफ्ते बापू ने स्वयं के मीठा खाने पर नियंत्रण किया, उसके बाद ही वे बच्चे को समझाने के लिए अपने आप को योग्य मान पाए थे। कहने का तात्पर्य यही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। उपदेशक वही सफल हो पाता है जो मनसा वाचा कर्मणा सुदृढ़ होता है। इन परिस्थितियों में वो आत्मबल के कौशल से वो सब कह और कर पाता है जिसे वो दूसरों से करवाना चाहता है। सीख दीजिए ताही को जाको सीख सुहाए। वर्तमान परिदृश्य में उपदेशक ज्यादा हैं, अमल करने वाले कम। यकीन मानिए किसी की परेशानी देखकर दुख बटाने की बजाय नसीहत देने की आदत कभी भी सामने वाले का दर्द कम नहीं करती, बल्कि उसे और परेशान और कमजोर करती है। किसी की छोटी सी गलती पर उसे नसीहत देना बड़ा आसान लगता है, पर हमारी जरा सी कमी कोई बता दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती, औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत।
0: कार्यक्रम चिंतन अभी हम प्रसारित कर रहे थे। आज का विषय था सिर्फ उपदेशक ना बने, अमल में लाएं। आलेख श्रीमती कामनी माथुर का। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। विषय होगा अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में। सुबह 10 कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे। कार्यक्रम में सुनिएगा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार होंगे लता खापरडे, माया खापरडे, मनोहर यादव और साथी।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा, सुबह 7:05 पर। और इस कार्यक्रम के बाद आनंद लीजिएगा श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 9:55 पर और दिन के 11:55 पर।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले होंगे सुबह 9:30 पर, दिन के 11 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, और रात 9:15 से रात 11 बजे तक। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे CF अनुभाग सरगुजा। शाम 5:05 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी हम लेकर आएंगे। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे हल्दी एवं अदरक को बोने के पूर्व उपचारित करें इस विषय पर, और भेंटवार्ता में सुनिएगा खेत बचाव पर चर्चा, खरीफ मौसम में उन्नत चारा प्रबंधन तकनीक विषय पर जानकारी। डॉक्टर कृष्ण डाहिरे अतिथि वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से भेंटकर्ता होंगे जीतू भैया। साथ ही सुनिएगा मौसम मंडी और सामयिक सुझाव। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने शाम 5:35 पर, शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे। रात 8 बजे सुगम संगीत में सुनिएगा श्रोताओं पंकज उदास के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे। और रात 8:15 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम रजनीकंधा। शाम 7:45 का समय होगा श्रोताओं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

समाचारों का अनुप्रसारण प्रतिदिन की तरह उनके नियमित समय पर किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में संस्कृत और हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: संस्कृत और हिंदी में समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं

उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, हवा है ठंडी ठंडी और मौसम भी है प्यारा। सो गया है चांद और सो गया है हर एक सितारा। कबूल हो आपको सलाम ए सुबह हमारा। आज सुबह सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा यानी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है। भीषण गर्मी के बाद मानसून की आहट सुनाई देने लगी है और ऐसे में पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और इस पर चर्चा करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठंडी हवाओं का स्पर्श, बादलों की हल्की दस्तक, चिड़ियों की मधुर चहचहट, प्रकृति मानो कह रही है कि एक नई सुबह नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत कर रही है।

श्रोताओं, मानव जीवन का अस्तित्व प्रकृति पर ही निर्भर करता है और शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरियाली हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आप सभी को तो याद ही होगा वो सुनहरा पुराना समय। पहले गांवों में बड़े बड़े पेड़, तालाब और साफ सुथरे खुले मैदान हुआ करते थे। लोग पेड़ों की छांव में बैठते थे, कुओं और तालाबों का पानी उपयोग में लाते थे। लोगों की ज़रूरतें कम थी, सीमित संसाधन और सुविधाएं भी थी, लेकिन जीवन खुशहाल था। धीरे धीरे इंसान ने विकास की राह पकड़ी, बदलाव का दौर चला और इच्छाएँ असीमित होती गईं और संसाधन सीमित होते गए। आज कंक्रीट के बढ़ते जंगलों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हरियाले वृक्ष कम होते जा रहे हैं और भीषण गर्मी बढ़ती ही जा रही है। और इस गर्मी के बाद अब हम सभी की निगाहें मानसून पर टिकी हुई हैं। हमारे भारत में साथियों, मानसून केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन का आधार है। किसानों की खेती, जलाशयों का भरना, भूजल स्तर का बढ़ना और पेड़ पौधों की हरियाली काफ़ी हद तक वर्षा पर ही निर्भर करती है। अच्छी बारिश से खेत लहलहाते हैं, नदियां और तालाब भरते हैं और पर्यावरण को एक नया जीवन मिलता है। लेकिन श्रोताओं, मानसून के साथ कुछ

0: सावधानियां भी जरूरी हैं। हमें वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए ताकि बरसात का पानी व्यर्थ ना बहे। घरों और आसपास के क्षेत्रों में पानी को जमा नहीं होने देना है। हम सबको पता ही है कि इससे मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बिजली कड़कने और आंधी तूफान के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहना भी आवश्यक है। पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है। और इन सब सावधानियों के साथ ही हमें बच्चों को वर्षा ऋतु के महत्व के बारे में भी बताना समझाना चाहिए कि बारिश केवल एक आनंद का अवसर नहीं बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का आधार भी है। श्रोताओं, हमारे आसपास गांव के कई कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने वर्षा के जल को सहेजा, पर्यावरण को संरक्षित किया और विकास की ओर कदम से कदम मिलाकर चले। हम सबको पता ही है हमारे छत्तीसगढ़ का धुड़मारास गांव पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यहाँ ग्रामीणों ने जंगल जल स्रोतों के लिए सामूहिक प्रयास किया। परिणाम स्वरूप गांव में हरियाली बढ़ी और जल स्तर में भी सुधार हुआ और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है इस गांव ने। और ऐसे कई गांव हैं जैसे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले की पारनेर में स्थित छोटा सा गांव रालेगढ़ सिद्धि भी इसका एक उदाहरण है। वहां ग्रामीणों ने वर्षा जल का संचयन किया छोटे बांधों और जल संरक्षण के माध्यम से सूखे क्षेत्र को हरियाली में बदल दिया। पानी की कमी से कभी जूझने वाला ये गांव जल प्रबंधन का आज मॉडल माना जाता है। और श्रोताओं, राजस्थान के कई गांवों में आज भी पारंपरिक जोहड़ और तालाबों के माध्यम से वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी लोगों ने जल की एक-एक बूंद बचाने की संस्कृति विकसित की है। विदेशों में भी कई देश वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रहे हैं। सीमित जल संसाधनों के बावजूद वहां जल का अत्यंत कुशल उपयोग किया जाता है। तो श्रोताओं, इन उदाहरणों से हमें सीख मिलती है कि समाज और प्रशासन मिलकर प्रयास करें तो वर्षा का पानी केवल बह कर नहीं जाएगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य संपत्ति बन सकता है। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास, अपनी भाग दौड़ भरे जीवन से कुछ समय निकाल कर हमें करना है और बदलाव जो आएंगे उसे हम खुद महसूस कर सकेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए आपको सुनवाते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट उमा शंकर पांडे से और जानते हैं क्या रहेगा आपके शहर बिलासपुर में आज ट्रैफिक का हाल।
1: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमा शंकर पांडे। अब आप सुनेंगे बिलासपुर जिले की आज की यातायात व्यवस्था। दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर में। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बिलासपुर वासियों के द्वारा यातायात के नियमों के प्रति सजगता, पर्याप्त यातायात संसाधन एवं यातायात के जवानों के प्रयास से ग्रामीण सड़कों सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सिर्फ शहरी नहीं संपूर्ण जिले में यही समस्या सड़कों में दिखाई देती है, वह है दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों का सड़कों तक विस्तार। इन व्यापारियों के इस कारनामे से सड़कें संकीर्ण होती हैं, सड़कों में सुगम यातायात प्रभावित तो होता ही है, जाम की स्थिति भी बनती है। इतना ही नहीं, कई स्थानों में दो पहिया चार पहिया रिपेयरिंग की दुकानों के सामने या पंचर आदि बनाने की दुकानों में वाहन सड़कों में आड़े तिरछे खड़े होते हैं, जिससे वहां पर सड़कों के संकीर्ण होने से यातायात की स्वाभाविक गति तो प्रभावित होती ही है, सड़क दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। बिलासपुर शहर में ऐसी स्थिति लिंक रोड, इंदीपारा, मगरपारा, सीपक चौक, तिफरा, सरकंडा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तखतपुर, रतनपुर, सीपत, मस्तूरी में भी देखी जा रही है, जो बेहद खतरनाक है। इन दुकानदारों के साथ साथ वहां वाहन खड़े करने वालों को भी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि आपकी ये चूक अव्यवस्था के साथ साथ किसी की जान की भी दुश्मन बन सकती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार विशेषकर शाम या रात के समय बच्चे गली मोहल्ले की सड़कों में बैडमिंटन

या क्रिकेट खेलते देखे जाते हैं। सड़कों में लगातार विभिन्न प्रकार के वाहनों का आवागमन बना होता है, किंतु सड़कों में खेल रहे इन बच्चों को सिर्फ गेंद ही दिखाई देती है। कई बार इस प्रकार खेलते हुए सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान देवें, उन्हें खेलने के लिए मैदान में भेजें ना कि सड़कों में। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा

0: साथ साथ दूसरों का जीवन भी सरल और सुगम बना सकते हैं और दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम आज सुबह में पुनः स्वागत आप सभी श्रोता साथियों का। श्रोताओं, जून का महीना केवल मानसून की प्रतीक्षा और पर्यावरण जागरूकता का ही नहीं बल्कि योग के महत्व को याद करने का भी समय है। योग भारत की प्राचीन परंपरा है जिसने आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाई है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक कला है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या एक आम बात हो गई है। ऐसे में प्रतिदिन कुछ समय, कुछ मिनट योग और प्राणायाम करने से शरीर ऊर्जावान रहता है, मन हमारा शांत रहता है और हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। श्रोताओं, विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित योग करने से श्वसन क्षमता में सुधार होता है, शरीर की लचीलापन बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा बेहतर होता है। और यही कारण है कि आज विश्व के अनेक देशों में योग को अपनाया जा रहा है। श्रोताओं, योग का सबसे बड़ा संदेश है प्रकृति के साथ सामंजस्य। सुबह की ताजी हवा में, किसी पार्क में या खुले स्थान पर किया गया योग हमें प्रकृति के और करीब ले जाता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए यदि हम योग को अपनाते हैं अपने जीवन में तो हमें पेड़ों, जल स्रोतों और स्वच्छ वातावरण को भी बचाना होगा। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट तो योग हम कर ही सकते हैं, इतना समय निकाल सकते हैं। साथ ही अपने परिवार, अपने बच्चों को भी योग से जोड़े, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। श्रोताओं, योग शरीर को शक्ति देता है, मन को शांति देता है और जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम आज सुबह अभी हम प्रसारित कर रहे थे और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए अवतार फिल्म से, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अवतार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। और अब लीजिए सुनिए छोटी सी बात, इस फिल्म का ये गीत आवाज़ दी हैं यशोदास और आशा भोसले ने, योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: और अब कार्यक्रम सदाबहार नगमे में लीजिए सुनिए हेमलता की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

हेमलता की आवाज़ में अभी आपने सुना अखियों के झरोखे से। इस फिल्म का ये गीत गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब लीजिए सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में तराना फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं तिलक राज थापर, संगीतकार राम लक्ष्मण।

शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में तराना फिल्म का ये नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब अगला गीत लीजिए, सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में चलते चलते फिल्म से, अमित खन्ना के बोल, बप्पी लहरी का संगीत।

चलते चलते फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अब किशोर कुमार की आवाज़ थी, अमित खन्ना के बोल और संगीत बप्पी लहरी का। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार, अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने

0: तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित

0: कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच

0: बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में मैं प्रवीणा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी, चाहे वो पोषक तत्वों की हो या आनुवांशिक कमी हो, हमारी शारीरिक संरचना पर गलत प्रभाव डालती है, तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। ऐसी ही एक त्वचा की बीमारी है एल्बिनिज्म। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हम मना रहे हैं। ये क्या है, किस तरह की परेशानी है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा को। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार प्रवीणा जी,
0: आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत

0: बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, एल्बिनिज्म क्या है और क्या ये एक आनुवांशिक शारीरिक समस्या है या कोई स्किन डिजीज है?
1: देखिए, एल्बिनिज्म का मतलब है कि आपके शरीर में, त्वचा में खास के कहीं पे भी पिगमेंट्स नहीं बन रहे, मतलब आपके मेलानिन नहीं बन रहे, जिसके कारण आपकी जो त्वचा का भूरा रंग है वो नहीं बन पा रहा। तो आपकी त्वचा का रंग सफ़ेद या क्रीमिश कलर का होता है, इवन आपके बाल भी सफ़ेद या क्रीम कलर के होते हैं, और कभी कभी आपकी आंखों की पुतलियाँ भी बहुत लाइट कलर की होती हैं, जो कि ओकुलोक्यूटेनस एल्बिनिज्म में होता है। ये एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है जहाँ पे पैदाइशी ही रंग बनना बंद रहता है।
0: अच्छा।
1: तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। सो ये त्वचा की बीमारी तो नहीं कहेंगे, बट एक अनुवांशिक स्थिति है जहाँ पे शुरू से ही एम्ब्रियो में ही आपके रंग नहीं बन रहे हैं, तो आप पैदा ही बिना रंग के होते हो।
0: अच्छा, तो तब क्या रीज़न है, क्या कारण है कि इस तरह का जो एल्बिनिज्म है उसको लेकर कोई बच्चा पैदा होता है?
1: देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है जहाँ पे म्यूटेशन कुछ जीन्स होते हैं जो मेलानिन को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बॉडी में। लाइक हमारे डीएनए में कुछ कोड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये वाला कोड ये कलर देगा या फिर ये वाला कोड ये शारीरिक संरचना देगा। उसी के किसी कोड में अगर डिलीशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, मतलब बदल जाए,
0: हाँ,
1: कोडिंग चेंज हो जाए, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अगर ये म्यूटेशन माता और पिता दोनों में है तो बच्चों में अनुवांशिक रूप से एल्बिनिज्म हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि माता और पिता को एल्बिनो होना पड़ेगा,
0: अच्छा,
1: उनमें ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब आपको दोनों जीन चाहिए। दो जीन एक जैसे होंगे तब जाके आपका रंग बनना बंद होगा। यदि आपके किसी भी पेरेंट से एक तरफ से ही म्यूटेटेड जीन आया तो आप सिर्फ कैरियर होंगे, तब आपको वो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चों को हो। तो जब दोनों ही पेरेंट्स में जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो 25% चांस है कि आपका वो दोनों जीन मम्मी पापा से आपको मिल गया, तो अब आपको एल्बिनिज्म होगा। 50% चांस है कि आपको एक से ही जीन मिला है, अब वो प्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको दोनों जोड़े में चाहिए वो जीन, तो सिंगल रहने से वो प्रेजेंट नहीं करता, बट आप कैरियर हो जाते हो। और 25% फिर से चांस होता है कि आपने वो म्यूटेटेड जीन दोनों ही पेरेंट्स से नहीं लिया,
0: जी
1: तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकते हो। तो ये बहुत बारी हो सकता है कि फैमिली में रन कर रहा हो बट कभी भी आपके दोनों पेरेंट, मतलब माता और पिता से जीन कभी मिला ही नहीं, तो कभी प्रेजेंट नहीं किया, बट संयोगवश किसी बच्चे में माता और पिता दोनों में वो जीन है और वो प्रेजेंट करता है, तब जाके वो बच्चे को एल्बिनिज्म होता है, जहाँ पे फिर सारे पिगमेंट्स नहीं होते बचपन से या बहुत हल्के होते हैं।
0: जी, तो ये छूने से या साथ रहने से या साथ में खाना खाने से इस तरह से भी हो सकता है या केवल माता पिता के द्वारा ही ये कैरियर है इसका?
1: जी, पहले तो एल्बिनिज्म कोई ऐसा विकार नहीं है, जेनेटिक प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं कि जीन्स में थोड़ा चेंज हो गया, तो जैसे नाक कभी लंबी हो जाएगी कभी छोटी हो जाएगी, बट हाँ कुछ चीज़ें जैसे बेसिक हैं। अब मेलानिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो नहीं बन रहा, तो ऑफ कोर्स हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, आम जनता देखती है, डॉक्टर्स नहीं देखते। तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन कहेंगे कि एक स्थिति है जहाँ पे हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
0: अच्छा,
1: ये छूने से नहीं फैलता, साथ बैठने से नहीं फैलता, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन को भी होगा ही। सो बीमारी तो नहीं है, बट एक कंडीशन है, एक अवस्था है, एक स्थिति है जहाँ पे आपके मेलानिन नहीं बन रहा। अब क्योंकि मेलानिन एज अ प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके आंतरिक जो भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको धूप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑफ कोर्स ये कुछ कुछ परेशानियां डेवलप कराता है। ये आपके विजन में भी डिफ़िकल्टी दे सकता है एल्बिनिज्म, जब आपके रेटिना में भी मेलानिन नहीं है। यूजुअली हमारे पिगमेंट्री जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो स्किन में तो होते ही हैं, बाल में होते हैं, हमारे आईज में भी होते हैं, तभी हमारा विजन होता है। कभी कभी हमारे आयरस में भी पिगमेंट्स की कमी होती है, तो अलग अलग रंग के हमको पुतलियां दिखती हैं, इसमें भी बहुत हल्की पुतलियां होती हैं, तो विजन

0: पार्ट हो इम्पेयर्ड हो सकता है, और इसका इफेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में पड़ता है, ऑफ कोर्स बच्चों को या जो बड़े हो गए हैं,
1: हाँ
0: बट उनके छूने बोलने बैठने खाने पीने से नहीं होता, लेकिन
1: जी,
0: इसको आप छू के या साथ में रह के नहीं फैला सकते।
1: तो जिन्हें एल्बिनिज्म की समस्या है उनको किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, धूप में ना निकलें या क्या करें वो?
0: जी, क्योंकि मेलानिन हमारा फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट है, ये हमको धूप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेज से बचाता है, ये हमको फोटो बर्न से भी बचाता है, तो हमारी चमड़ी धूप में जलती नहीं है।
1: जी
0: हम यूजुअली कहते हैं धूप में गए तो टैन हो गए, तो टैन हो गए मतलब हमारे मेलानोसोम ने और थिक लेयर बनाया और हमारे इंटरनल स्किन को बचा लिया जलने से,
1: जी
0: बट मेलानिन गाढ़ा हो गया, तो टैनिंग ऐसे प्रिवेंट करती है। अब क्योंकि यहाँ पे मेलानिन है नहीं तो वो प्रिवेंशन वाला पार्ट नहीं होता, तो धूप में स्किन जल्दी जल जा सकती है, जल्दी लाल हो जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, और इवन धूप में आँखों में, क्योंकि पुतलियों में भी रंग नहीं होता, तो आपको धूप में बहुत ग्लेयरिंग होगी, मतलब आँखें चौंधिया जाएंगी,
1: अच्छा
0: इवन विजन भी इसमें कम होता है, तो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं दिखता हो, आपको नज़दीक की दिखने की समस्या हो सकती है, दूर की दिखने की समस्या हो सकती है, कभी कभी किसी किसी केस में आंखें स्ट्रैबिस्मस होता है, इवन आंखें घूमती रह सकती हैं या बैलेंस नहीं रहती, मतलब फोकस नहीं कर पाती,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे अल्बिनिज्म में आंखें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो धूप में उसमें भी उनको बहुत दिक्कत होता है।
1: जी
0: तो उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि कोशिश करनी चाहिए कि कवर्ड कपड़े पहनने होते हैं, धूप में हमेशा सनस्क्रीन लगा के निकलना होता है, जो भी एक्सपोज पार्ट है, छाता और धूप के बड़े चश्मों का ज़रूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोशनी शरीर पे पड़ेगी वो उतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में उनको परेशानी देगी।
1: अच्छा
0: और हाँ, क्योंकि आप जितना फोटो प्रोटेक्शन अगर आप मेलानिन से नहीं कर सकते हो तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी।
1: जी, डॉक्टर साहब हमारी बातें चल रही हैं एल्बिनिज्म के ऊपर, और ये कार्यक्रम में हमें और भी ज़्यादा जानकारी आपसे जाननी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आप गीत संगीत में भी रुचि रखती हैं?
0: जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कोई गाना जो आप सुनना चाहती हैं।
0: जी मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मेरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छिप जाऊंगी रात में ही मुझे पी का संग दे दे।
1: जी, तो ज़रूर आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। एल्बिनिज्म वाले जो लोग हैं, भोजन में वो किस तरह का चीज़ें लें कि जिससे उनके शरीर को ज़्यादा तकलीफ ना हो?
1: भोजन में एल्बिनिज्म वाले लोग कोशिश कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वाली चीज़ें लेंगे वो उतना धूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेलानिन मिसिंग है तो ये उस तरीके से नहीं काम करेगा जैसे नॉर्मल करता है। तो कुछ फल सब्जियां जैसे कि हरी सब्जियां जितनी भी हो गई वो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं। गाजर, पपीता, आम, ये सब बीटा कैरोटीन रिच होते हैं, विटामिन ए रिच होते हैं। इवन अगर जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं, खास के येलो वाला पार्ट जो विटामिन ए रिच होता है। इस तरीके से आप विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आप बढ़ा सकते हो अपने बॉडी में
0: जी।
1: और विटामिन सी भी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ होता है। आप जितना हो सके फल सब्जियों का उपयोग करना बिकॉज यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल इंजरी बहुत चलेगा स्किन में
0: जी।
1: तो उसको स्कैवेंज करने के लिए या उसको शरीर से हटाने के लिए हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हमारे सेल्स हमेशा काम करते रहते हैं बॉडी के डैमेजेस को कम करने के लिए क्योंकि
0: हाँ
1: यहाँ
0: हाँ
1: पे एक प्रोटेक्टिव लेयर मिसिंग है तो ऑफ कोर्स हमारे सेल्स को थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा सपोर्ट की। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर फैक्टर होगा। बॉडी को ल्यूब्रिकेट करके भी रखना चाहिए बिकॉज आप जितना ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट, ल्यूब्रिकेट और ऑयलिंग करके रखोगे सूरज की जो भी रोशनी होती है वो स्किन पे परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो बहुत
0: जी।
1: हद तक अंदर नहीं जाएगी। बट ऑफ कोर्स सनस्क्रीन या फिजिकल प्रोटेक्शन ज़्यादा हद तक आपको हेल्प करेगा।
0: जी, आपने बताया कि सनस्क्रीन लगा सकते हैं शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, त्वचा को। घरेलू कोई उपाय हैं जिनको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे श्रोता हैं वो उसको उपयोग कर सकें?
1: देखिए घरेलू तो बहुत ज़्यादा फोटो प्रोटेक्शन नहीं होता, जैसा मैंने कहा आप थिक लेयर तेल जब लगाते हो
0: हाँ।
1: तो वो आपकी चमड़ी को इतना ज़्यादा चमकदार करता है कि सूरज की जो भी किरणें शरीर पर आती हैं वो अंदर नहीं घुसती,
0: जी।
1: बहुत हद तक परावर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अब क्या है कि आप ये जो तेल है ये आपके रिफ्लेक्शन में बहुत हेल्प करता है।
0: जी
1: आपने देखा होगा गांव के लोग सरसों तेल लगा के ही गांव काम पे निकलते हैं, नहा के वो जरूर लगाते हैं सरसों
0: बिल्कुल
1: तेल
0: बिल्कुल
1: और वो खेतों में आराम से काम कर पाते हैं।
0: जी।
1: एक तो उनका शरीर का रंग भी उनको हेल्प करता है क्योंकि वो गाढ़े ब्राउन कलर की स्किन हो जाती है खेतों में काम करने से।
0: जी।
1: बट ऑफ कोर्स सिर्फ हम इस बातों पे नहीं ध्यान दे सकते कि सिर्फ तेल लगा के बाहर निकल जाए तो हम बच जाएंगे। आप कवर्ड कपड़े पहनिए, बड़ा हैट पहनिए, छाता अगर उपयोग कर सकते हैं करिए, बड़े चश्मे काले पहनिए जो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा सके,
0: जी।
1: ऐसा ज़रूर करिए।
0: अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि एल्बिनिज्म वाले जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्कूल में या स्पोर्ट्स में या जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना के जो रोज़मर्रा के शारीरिक व्यायाम हैं या खेल हैं, क्या वो कर सकते हैं? उसमें कोई समस्या तो नहीं
1: नहीं
0: आती
1: नहीं
0: उन्हें?
1: फिजिकली दे आर परफेक्ट फिजिकली। देखिए उनको कोई भी शारीरिक समस्या ऐसी नहीं होती। विजन का दिक्कत तो ज़रूर होता है
0: जी।
1: पर शरीर में कमजोरी नहीं होती।
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: सभी तरीके के खेल कूद कर सकते हैं बट हाँ बशर्ते उनको आउटडोर खेल से परहेज करना चाहिए।
0: जी।
1: वो इंडोर खेल करे तो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज आउटडोर में आपका सन एक्सपोजर होगा।
0: तो वो कैसे जाने कि मतलब उनको उनके शरीर में जैसे रेडनेस है तो वो कैसे जाने कि ये किस तरह की परेशानी है या किस कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: जिनको भी एल्बिनिज्म है यानी रंग

0: बन रहा, अगर उनको धूप में जाने के बाद स्किन रेड रहती है और बहुत देर तक रेड रहती है या जल रही होती है, तो उनको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, स्किन वाले डॉक्टर को मिलना चाहिए जो
1: जी जी
0: चमड़ी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स
1: त्वचा
0: हैं।
1: रोग विशेषज्ञ हैं
0: बिल्कुल।
1: जो जी
0: और शरीर पे यदि कहीं पे भी नया पिगमेंटेशन या कोई नया घाव बन रहा है जो भर नहीं रहा, या कोई तिल आना शुरू होता है तो भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है कि एल्बिनिज्म में 17-18 साल के बाद भी कभी जब कभी भी रंग नहीं बना और सडन गालों पे रंग बनना नॉर्मल शुरू हो जाता है,
1: जी
0: तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं पे रंग भी बनना शुरू हो जाता है।
1: अच्छा, मतलब शरीर में कुछ भागों में कलर आना जो डार्कनेस है
0: बहुत
1: वो शुरू हो
0: रेयर
1: जाती है
0: है,
1: जी।
0: बट मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें रंग बनना वापस शुरू हुआ है, जो कि नॉर्मल पिगमेंटेशन शुरू होती है, बट उनके लिए फिर परेशानी की सबब वो पिगमेंट है,
1: अच्छा
0: बिकॉज अब तक वो कंफर्टेबल थे रंग के बिना, और वो ब्राउन कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन उनको फिर सही गालों पे अच्छा नहीं लगता,
1: जी
0: तो
1: जी
0: फिर उस स्थिति में वो रंग भी हटाना होता है।
1: अच्छा, तो उसका अलग इलाज
0: जी,
1: मतलब
0: उसके लिए फिर अलग इलाज होता है, कुछ
1: जी
0: दवाइयाँ होती हैं जो आपके कुछ एरिया में अगर रंग बहुत ज़्यादा बन गया है तो कम कर सकते हैं।
1: हाँ
0: ये खास के उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनको जनरलाइज्ड विटिलाइगो होता है, सफ़ेद दाग की परेशानी, कि
1: अच्छा
0: पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हुआ जा रहा है बट कुछ एरिया है जहाँ पे रंग बना ही हुआ है, तो अब वो एक जैसा नहीं फील करते, पैची फील करते, तो उस केस में कुछ ऐसे मिलानोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं जिनको लगाने से जो बचा खुचा रंग होता है वो भी हम हटा सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि विटिलाइगो में कभी भी आईज इन्वॉल्व नहीं होते तो वो थोड़ा ठीक रहता है।
1: जी जी
0: एल्बिनिज्म में भी ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहाँ पे रंग वापस बनने लग जाता है, तो फिर आप उस पिगमेंट्स को भी हटा सकते हो, बट उनका रेगुलर स्किन चेकअप होते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप प्रोन टू एग्जिमास भी होते हो और प्रोन टू कैंसर्स भी होते हो।
1: अच्छा, मतलब ऐसे लोगों को एक्जिमा
0: देखिए, कोई भी फोटो डैमेज होगा ना तो वो
1: हाँ हाँ
0: एक्जिमा डर्माटाइटिस की तरफ जा सकता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आगे बातें हमारी और भी होंगी, अभी एक वक्त हो गया है कि आपसे एक गीत की और जो आप सुनना चाहती हैं।
0: जी, लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ चंदन सा बदन चंचल चितवन।
1: जी, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत
0: जी
1: है, तो सुनवाते हैं आपको।

0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर और कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं क्या एल्बिनिज्म का कोई परमानेंट इलाज है या इसका कोई क्योर है क्या?
1: जी, अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार ही जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है तो आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते।
0: जी।
1: अब आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो।
0: जब भी हमारे शरीर में कोई विकार होता है या हमारे शरीर में किसी तरह की समस्या होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक मिथक होता है, चाहे वो समाज में हो चाहे परिवार में हो। और हर बीमारी में इस तरह होता है कि भाई, अगर उसको शरीर के में अगर उसको कलर चेंज हो गया है या स्पॉट्स आ रहे हैं, तो उनका कुछ और सोचना हो जाता है। तो इस तरह से जो कॉमन जो लोग इस चीज़ के बारे में, एल्बिनिज्म के बारे में सोचते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो लोग सोचते हैं?
1: देखिए, क्योंकि आपने जो बोला कि शारीरिक विकार आ जाता है, तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी स्थिति में तो शारीरिक विकार नहीं आता, और सिर्फ एल्बिनिज्म का नहीं बोल रही हूँ मैं, विटिलाइगो में भी बोल रही हूँ।
0: जी।
1: ठीक है, सिर्फ रंग नहीं बनता, सफेद दाग की परेशानी में भी रंग नहीं बनता, बट मुझे लगता है कि समाज का मानसिक विकार तो जरूर है,
0: हाँ।
1: क्योंकि ये जितनी भी परेशानी है ना इंसान के, जिसको है उसके जीवन का, वो उनकी खुद की शरीर की परेशानी नहीं होती,
0: जी।
1: ये समाज के लोग, परिवार के लोग, दादी नानी चाची फूआ मौसी अड़ोसी पड़ोसी जो आपके सबसे सगे बनते हैं ना, ये उनके मानसिक विकार के कारण परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं।
0: जी।
1: वरना न ही कोई सफेद दाग का बीमारी वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है, और ना ही एल्बिनिज्म वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है।
0: जी।
1: विजन ऑफ कोर्स अफेक्टेड रह सकता है, बट कोई मानसिक विकार नहीं होता, शारीरिक विकार नहीं होता, आपको सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ एल्बिनिज्म में उनको परेशानी हो रही है विजन में, या किसी किसी में बिल्कुल आंखें बिल्कुल नहीं देख पाती, वो सीवियर कंडीशंस में होता है, तब तो आप ठीक है। बट सोसाइटी के मन का विकार मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान अपनी उस परेशानी से उतना परेशान नहीं हो जितना वो इस बात को सुन के परेशान हो कि अरे तुमको क्या हो गया,
0: जी
1: तुमने दिखाया नहीं, अरे उसको हुआ था तो उसके पूरे शरीर में हो गया, फिर उसको ऐसे हो गया, बिल्कुल नहीं ठीक होता। बिकॉज देखिए, हम लोग प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस लो होता है ना, वो अपनी वजह से नहीं होता, ये उनके जो शुभ चिंतक होते हैं ना, ये उनकी वजह से होता है, ये जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, ये उनके शुभ चिंतकों की वजह से होता है।
0: जी।
1: तो मुझे जैसा लगता है कि ये शारीरिक विकार ना होके सामाजिक मानसिक विकार है।
0: जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से समझाया आपने इस चीज़ को। और सच में अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई समस्या है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो विशेषज्ञ हैं उनके पास लेकर जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग में कोई मिथक बना लें या उस
1: जी
0: बच्चे को उस तरह से हम परेशान करें। बहरहाल डॉक्टर साहब, जो एल्बिनिज्म है, इसके साथ में एक हेल्दी, स्वस्थ और विश्वासपूर्ण, अपने ऊपर भरोसा करके इंसान कैसे जी सकता है?
1: देखिए, सबसे पहले आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने मेरा रंग नहीं देखा, आप मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई करी,
0: जी।
1: मैंने अपने करियर में कुछ पाया, तो समाज में ना आपके ज्ञान का, आपके कर्म का महत्व है।
0: जी
1: आप उनकी बातें सुनते हो जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है, तो सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि इंसान को उसको फॉलो करना

0: चाहिए जो उसका मोटिवेशन बढ़ाए या जो उसको सफलता प्राप्त करने में हेल्प करे। रंग कोई बहुत मायने नहीं रखता,
1: बिल्कुल
0: ठीक है? आप सांवले हो सकते हो, काले हो सकते हो, आपको चेहरे पे झाइयाँ हो सकती हैं, आपके लहसुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, जो
1: जी
0: कि हो सकता है कि आप बौद्धिक स्तर पे करो, हो सकता है कि आप शारीरिक स्तर पे करो, या आप समाज में हेल्प करो, तो आपका लाइफ कितना फ्रूटफुल है और
1: बिल्कुल
0: समाज के प्रति कितना हेल्पफुल है, या आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई अंतर पड़ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव अंतर ऑफ कोर्स,
1: जी जी
0: आपका जीवन वहीं सार्थक हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन यदि आप सोचते हो कि मैं गोरा हूँ, या मैं काला हूँ, या मेरे को रंग नहीं बन रहा, या फिर मेरे पास ये कमी है, लोग क्या कहेंगे, सबके पास सब अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा नहीं है, सब अपने अपने दुख में हैं, सबके पास एक छोटी सी परेशानी है जो शायद आपको बस नहीं पता है।
1: जी
0: तो आप अपने जो भी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, आपका जो भी शारीरिक मानसिक या बौद्धिक क्षमता है जिसको आप बढ़ा सकते हो और जिससे फिर आप और बेहतर हो सकते हो, आप उस पे काम करो।
1: जी
0: कोई जरूरी नहीं है कि आपको भीड़ के जैसा दिखना है, तो आप अपनी क्षमता पे काम कर सकते हो और अपना लाइफ में एक मकाम हासिल कर सकते हो जिस भी फील्ड में करो।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। और अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं हमारे, उनको आप एल्बिनिज्म के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक करना चाहती हैं?
0: देखिए, एल्बिनिज्म क्योंकि मेलानिन की कमी की वजह से है, तो एक तो मैं एल्बिनिज्म के लोगों को ये कहूँगी कि आप प्लीज़ धूप से बचिए, कवर्ड कपड़े पहनिए, सनस्क्रीन्स लगाइए, हैट्स पहनिए, चश्मे पहनिए, और प्लीज़ डॉक्टर्स को बीच बीच में मिलते रहिए।
1: जी
0: और मैं नॉर्मल लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो हम गोरे और सांवले हो गए, टैन हो गए या झाइयाँ बन गई, इसके पीछे पड़े रहते हैं, आप देखो कि मेलेनिन कितना जरूरी है, कि
1: जी
0: उसका नहीं होना एक बीमारी हो जाता
1: बिल्कुल।
0: है ना?
1: तो इसमें मतलब सबसे बड़ी सावधानी ये है कि धूप से जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना बच कर रहें, और
0: जी
1: अपने शरीर की इस समस्या को लेकर डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, आपने आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर हमारे श्रोताओं को बहुत उम्दा जानकारी दी, और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रवीण जी।
1: इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें अभी आप सुन रहे थे एल्बिनिज्म रोग के कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट कर रही थी प्रवीणा त्रिपाठी और प्रस्तुति रमा शंकर की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इस कार्यक्रम में आज सुनिए, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के

0: नए आयाम देखे हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 4,399 दिन का हो गया है। इस तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो 12 वर्ष पूरे किए हैं और इस दौरान जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: विकल्प जी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: जी शशांक जी, जैसा भी हम परिचय में बता रहे थे कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, शशांक जी, इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां आपकी नजर में क्या है?
1: विकल्प जी, मुझे लगता है कि इस 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि एक स्टेबल सरकार,
0: मतलब
1: जो
0: स्थिर सरकार जी,
1: जो विकास के अभी आपने जो आंकड़े गिनाए
0: जी,
1: ये सारा जो कुछ है वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक स्थिर सरकार 1990 से लेके 2014 तक
0: जी,
1: जो अस्थिरता थी जिसके कारण भारत को विकास की जिस गति से और दूसरे आयामों में जिस तरह से एक अपने आप को स्थापित करना था
0: जी,
1: उसमें जो हम चुके
0: जी,
1: मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और महत्वपूर्ण बात
0: जी,
1: अभी आपने पंडित नेहरू से मोदी जी की एक तुलना की,
0: उनके कार्यकाल की
1: हाँ। तो देखिए कितना एक गजब का एक वो है कि 52 में वो निर्वाचित हुए
0: जी,
1: 52 से 64 तक वे रहे
0: जी,
1: और ये 14 से अभी 26 हुआ है
0: जी।
1: इस दौरान
0: जी
1: वो भी बहुत स्थिर सरकार थी
0: जी,
1: और इसलिए उस समय भी जो भारत का एक जो बुनियाद बनना चाहिए था
0: जी,
1: वो शुरू हुआ। लेकिन एक देखिए कि जहां कमियां थी उस कमियों को इस 12 साल की सरकार ने, 1962 का एक बड़ा युद्ध हुआ
0: जी
1: चीन के साथ
0: जी,
1: और उसमें हम बुरी तरह से हारे थे
0: बिल्कुल जी।
1: मोदी जी की सरकार का जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप देखेंगे
0: जी,
1: तो जो सामरिक शक्तियां हमारी जो बनी हैं
0: जी,
1: और अभी लगातार जिस प्रकार से हम अपने विरोधी देशों को जो आतंकवाद फैलाते हैं
0: जी,
1: चाहे वो उरी हो
0: जी,
1: चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो
0: जी,
1: ये जो तैयारी है भारत की, ये जो क्षमता बढ़ी है 12 वर्षों में, हमारा संविधान भी जो है
0: जी,
1: जब उसकी उद्देशिका की बात हम करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में
0: जी,
1: तो भारत की संप्रभुता किसमें होगी? जब उसकी सामरिक शक्ति इतनी होगी कि हम किसी दूसरे को डराएंगे तो नहीं, लेकिन कोई अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा
0: जी,
1: तो उसका माकूल उसको जवाब देंगे
0: बिल्कुल।
1: तो आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा संतोष भारत के नागरिकों को इस बात के लिए होना चाहिए
0: जी,
1: कि भारत अपनी सामरिक शक्ति के आधार पर वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अब भारत 1962 की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है
0: बिल्कुल। एक बात और शशांक जी, जैसे हम पिछले 12 वर्षों में यदि देखते हैं तो केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। यदि हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो जनधन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है, और डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन इससे अलग हटके मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो क्या लगता है उस समय क्या चुनौतियां थी उनके सामने, देश के सामने, और आज जब 12 वर्षों के सफर को देखते हैं तो हमने उन चुनौतियों से कितना पार पाया है?
1: विकल्प जी, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती 2014 में देश के समक्ष थी
0: जी,
1: वो आर्थिक चुनौती थी
0: जी।
1: जिस प्रकार 2008 में अमेरिका सहित पूरे विश्व में एक जो मंदी का दौर आया था
0: जी,
1: उस मंदी के दौर से निकलने के लिए जिस तरह के भी प्रयास अपने देश में हुए थे
0: जी,
1: वो प्रयास मुझे लगता है कि देश को कई आर्थिक चुनौतियों से घेर लिया था।
0: अच्छा,
1: तो उससे ये हो रहा था कि देश का विकास, देश में अधोसंरचना का विकास
0: जी,
1: देश में विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
0: जी,
1: वो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे
0: जी।
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों के समक्ष

0: भारत की जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश हमको घेर रहे थे,
1: जी
0: आतंकवाद जिस तरह से मुंह फैलाए हुए था,
1: जी
0: नक्सलवाद अपने चरम पर था 2014 को अगर आप देखेंगे,
1: जी
0: तो ये जो आंतरिक चुनौतियां थी, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी, और उसके साथ भारत का विकास, रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय, भारत की अधोसंरचना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने संविधान की बात मैंने इसके पहले प्रश्न का उत्तर जब आपका दिया,
1: जी
0: तो उसका पहला जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं,
1: जी
0: और हमारे संविधान के उद्देशिका का अंतिम शब्द आता है हम एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। और भारत के अंदर में कश्मीर में जिस तरह के हालात थे, अभी हम 2-3 दिन पहले देखा है कि हमने मनाली से लद्दाख तक का एक हमारा मार्ग तैयार हुआ है। देखिए
1: जी
0: ये कितनी बड़ी घटना है कि भारत का ही एक क्षेत्र लद्दाख,
1: जी
0: जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखेंगे तो लद्दाख जाने का भारत का सीधा कोई रास्ता नहीं था,
1: वो कोई सुगम रास्ता
0: कोई
1: नहीं था।
0: सुगम रास्ता नहीं था।
1: जी
0: तो लद्दाख को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने का एक बहुत बड़ा जो कदम है
1: जी
0: वो इस सुरंग से संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल
0: तो ये चुनौतियां उस समय मैं देखता हूं।
1: जी। एक बात और है कि जैसे ये 12 सालों की यदि हम बात करें तो गरीब कल्याण जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। फिर चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इन 12 वर्षों में चाहे वो युवा हो, महिला वर्ग हो, किसान भाई बहन हो, इनको सशक्त बनाने में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका क्या मानना है यदि हम विभिन्न वर्गों की बात करें?
0: देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक चुनौती जो बहुत बड़ी थी उस समय वो
1: जी
0: भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी,
1: जी
0: एक पारदर्शिता बहुत बड़ी चुनौती थी।
1: जी
0: हमारे तो पूर्व के हमारे देश के नेताओं ने कहा कि 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पहुंचता है।
1: जी जी जी
0: उनको ठीक करने के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आई
1: जी
0: उसमें हमने जो जनधन योजना को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना
1: जी
0: और उससे हम 50 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया हमने इस
1: जी
0: जनधन योजना के माध्यम से। देखिए इससे लाभ क्या हुआ, 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।
1: जी
0: दूसरी चीज कि जो हमारे जितने भी बल्ब लगते थे वो पहले के जो पीले रंग के जो बल्ब आते थे वो लगते थे, जो 40 वाट के, 25 वाट के, 60 वाट के,
1: जी
0: जब टेक्नोलॉजी बदल गई तो एलईडी का जब उपयोग होने लगा
1: जी
0: तो सरकार ने कहा कि भाई आप एलईडी बल्ब का उपयोग करिए।
1: जी
0: 65 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए।
1: जी
0: देखिए विकल्प जी इनसे फायदा क्या हुआ,
1: जी
0: इनसे फायदा हुआ कि कम से कम 2025 लाख किलोवाट,
1: जी
0: इतनी बिजली की बचत हुई।
1: बिल्कुल
0: पिछले अगर 12 वर्षों में देखेंगे ना तो बहुत सारे पावर प्लांट इस देश में नहीं लगे
1: जी
0: क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है, तो हमने गैर परंपरागत सोर्स की तरफ गए,
1: जी
0: हमने ऊर्जा जो है वो सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाया,
1: जी
0: और पूरे देश में उत्तर प्रदेश बिहार सहित ऐसे हजारों लाखों गांव थे
1: जी
0: जहां पर बिजली की पहुंच नहीं थी,
1: जी
0: वहां तक हम बिजली की पहुंच तक ले। तो गरीबों को जो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, सड़क, बिजली, पानी, उज्ज्वला योजना, हर घर में जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा,
1: जी
0: गरीबों की समस्याओं को निराकरण करने की जो एक सोच और पहल होती है
1: जी
0: वो हमको इन 12 सालों में दिखाई देता है।
1: जी
0: हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका खुद का घर हो।
1: जी
0: तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये केवल एक मकान बनाकर देना नहीं है, मकान बनाकर देने की योजना तो बहुत पहले से चल रही है,
1: जी
0: लेकिन एक ऐसा घर दे देना केवल एक कमरे का नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के, आपके पास जमीन होनी चाहिए,
1: जी
0: तो एक जो जमीन से जोड़ने, समाज से जोड़ने और अर्थव्यवस्था जिसे जोड़ने का जो उपक्रम पिछले 12 वर्ष में सरकार ने अलग अलग तरीके से किया है उसका
1: जी
0: लाभ हमको इन 12 वर्षों में कहीं ना कहीं दिखाई देता है।
1: एक बात और शशांक जी, अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। यदि हम युवा कल्याण की बात करें, युवा वर्ग के कल्याण की बात करें, तो देखिए एक युवा जब पढ़ाई करता है तो शिक्षा वो हासिल करता है, ज्ञान हासिल करता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि वो रोजगार प्राप्त करे। इन 12 वर्षों में हमने देखा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको मजबूती देने का प्रयास किया गया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश भी आकर्षित किए गए हैं। आपका क्या मानना है?
0: देखिए अगर आप 12 साल में देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी विकल्प जी,
1: जी
0: कि हमने विनिर्माण क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
1: जी
0: उन क्षेत्रों पर हमने काम नहीं किया जो भारत में उत्पादन ही नहीं होता था।
1: जी

0: 1991 में जब हमने उदारीकरण का जो काम शुरू किया था,
1: जी
0: तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात हमने की थी 1992 में,
1: जी
0: लेकिन इसमें बहुत काम नहीं हुआ।
1: जी
0: अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल का सबसे बड़ा बाजार आज भारत बना हुआ है,
1: जी
0: लेकिन 2014 में कितने मोबाइल भारत में बनते थे? आज 33 करोड़ मोबाइल केवल बन नहीं रहे हैं, भारत से वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं,
1: सिर्फ मोबाइल ही नहीं,
0: सेमीकंडक्टर तक
1: यूनिट सब लग रही हैं।
0: तो इसके लिए सोच क्या है?
1: जी
0: आप देखिए, रक्षा उपकरण
1: जी
0: जो पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे,
1: जी
0: आज भारत 23,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा उपकरण है वो
1: जी
0: दुनिया के अनेक देशों को बेच रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब हम मोबाइल बना रहे हैं, जब हम रक्षा के उपकरण बना रहे हैं, तो रोजगार तो किसी ना किसी स्तर से मिल रहा है।
1: बिल्कुल
0: इसके लिए सरकार ने बहुत सारे, जहां पर रोजगार जनरेट हो,
1: जी
0: ऐसे पीएलआई एक योजना लाई थी।
1: जी
0: उस पीएलआई योजना में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया था,
1: जी
0: और उससे मुझे लगता है कि लगभग 14 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला।
1: मतलब श्रोताओं को बता दें कि प्रोडक्शन लिंक्ड
0: प्रोडक्शन लोग
1: इन्वेस्टमेंट,
0: ने
1: उत्पादन
0: इंटेंसिव्स,
1: उत्पादन आधारित,
0: जी, जो ये मेक इन इंडिया है
1: जी
0: और ये आत्मनिर्भर भारत की जो सारी चीजें हैं, हमने
1: जी
0: अपने वैक्सीन्स बनाए,
1: जी
0: तो ये भारत के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक जो बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू हुआ,
1: जी
0: मुझे लगता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में काम करता है। इससे रोजगार भी मिलता है। 12 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता किसी
1: जी
0: भी देश के लिए, लेकिन
1: जी
0: 12 साल में जिस नैतिकता से, जिस ईमानदारी से जो काम हुए हैं,
1: जी
0: लेकिन अच्छा करने का जो मन से जो प्रयास हुआ है,
1: जी
0: उसका परिणाम दिखने लगा है।
1: जी एक बात और कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये 12 वर्ष सरकार को पूरे हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार ने राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया है, और इन्हीं अथक जो प्रयास है उनका परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है, और विकसित भारत के संकल्प के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। शशांक जी, विदेश नीति के मोर्चे की यदि हम बात करें तो भारत की जो वैश्विक पहचान है वो इन 12 वर्षों में मजबूत हुई है, आपका क्या विचार है?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसमें मैं संक्षेप में आपको बता दूं
1: जी
0: कि जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा है,
1: जी
0: वो राष्ट्र प्रथम कैसे? तो संयोग से हमने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए।
1: जी
0: इससे हम जो एक उपनिवेशवादी मानसिकता है
1: जी
0: उसको छोड़कर स्वदेश की मानसिकता, अपने देश के प्रति प्रेम करें, अपने देश के उत्पादों से प्रेम करें, ये भी भावना कहीं ना कहीं आपको पिछले 10-12 वर्षों में ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देती है।
1: जी
0: तो आपका देश जब अपने ऊपर निर्भर होगा, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
1: जी
0: और उस लोकतंत्र में जब एक सर्वप्रिय
1: जी
0: और बहुमत से बनी हुई सरकार का मुखिया,
1: जी
0: और सरकार जब बनती है, तो पूरी दुनिया आपकी तरफ सम्मान से देखती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये विदेश नीति में आपको झलकता है।
1: जी
0: प्रधानमंत्री जी आज किसी भी देश में जाते हैं, तो ये भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र का बहुमत से निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के रूप में एक सम्मान अपने आप बढ़ता है।
1: जी
0: तो भारत के अपने जो ताकत बनेगी,
1: जी
0: चाहे वो सामरिक हो, आर्थिक हो, अधोसंरचना हो, जब ये ताकत बढ़ेगी तो
1: जी
0: दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। G20 का
1: समय
0: सफल आयोजन होना
1: आयोजन
0: हो,
1: हो जी
0: चाहे G7 हो,
1: जी
0: मुझे लगता है कि भारत ओवरऑल, और वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की जनता ने एक बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाई है।
1: जी शशांक जी, वैसे तो इस 12 वर्षों की जो उपलब्धि भरी यात्रा है उसको 15 मिनट में समेटना जो है वो सागर को गागर में भरने के समान है, लेकिन आपने कमाल भी कर दिखाया, और श्रोताओं को बहुत समग्रता के साथ में सारगर्भित रूप में आपने इन 12 वर्षों के सफर को समेटा है। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते
0: जी,
1: हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करते थे विकल्प रंजन शुक्ला। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अनु मलिक की बनाई तर्ज पर हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाजें शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है राधा का संगम।

0: जो शहीद हुए हैं।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले कर रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में, FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रिक

इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी। इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में। साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राज कमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

0: वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।
1: तन, तन,

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

0: सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में VSK ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में 14 जून तक किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया ने गुब्बारा छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम में पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता खापर्डे की आवाज़ में।

कार्यक्रम अमराई में अभी आपने सुना लता खापर्डे की आवाज़ में ये लोकगीत। श्रोताओं, आज कार्यक्रम अमराई में हम आपके लिए लेकर आए हैं लता खापर्डे, माया खापर्डे और साथियों की आवाज़ों में, और मनोहर यादव और साथियों की आवाज़ों में कुछ चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला लोकगीत। स्वर है मनोहर यादव और मनीबाई का।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
5: कार्यक्रम अमराई में अगला लोकगीत लीजिए सुनी माया खापर्डे की आवाज में।

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मनोहर यादव और जयशंकर जायसवाल की आवाज़ों में ये लोकगीत।

0: और अब लीजिए प्रस्तुत है लता खापर्डे, माया खापर्डे और रमेश ठाकुर की आवाज में ये लोकगीत।
1: Thank you.

और अब कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत लीजिए, सुनिए मनोहर यादव और मनीबाई यादव की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत अभी आप सुन रहे थे मनोहर यादव और मनीबाई यादव की आवाज़ों में, और इसी के साथ कार्यक्रम अमराई यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया लता खापर्डे, माया खापर्डे और साथी, और मनोहर यादव और साथी का गाया छत्तीसगढ़ी लोकगीत। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम नए तराने में पहला तराना लीजिए सुनिए, केदारनाथ फिल्म से आवाज़ें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म केदारनाथ का गीत आवाज़ें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे अमित त्रिवेदी का संगीत, और अब लीजिए सुनिए ड्रीम गर्ल टू इस फिल्म का गीत, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये गीत है, गीत और संगीत आरको का।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: कार्यक्रम नए तराने में आप लीजिए सुनिए फिल्म बरेली की बर्फी। इसका गीत स्वर आयुष्मान खुराना का, गीत और संगीत आरको का।

0: कार्यक्रम नए तराने में समय हुआ है श्रोताओं, आज के ट्रैफिक अपडेट का जो हमें मिलता है उमा शंकर पांडे से, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट और जानिए क्या रहेगा आपके शहर बिलासपुर में ट्रैफिक का हाल।
1: नमस्कार मित्रों, मैं हूँ उमा शंकर पांडे। अब आप सुनेंगे बिलासपुर जिले की आज की यातायात व्यवस्था, दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर में। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बिलासपुर वासियों के द्वारा यातायात के नियमों के प्रति सजगता, पर्याप्त यातायात संसाधन एवं यातायात के जवानों के प्रयास से ग्रामीण सड़कों सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, सिर्फ शहरी नहीं संपूर्ण जिले में यही समस्या सड़कों में दिखाई देती है, वह है दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों का सड़कों तक विस्तार। इन व्यापारियों के इस कारनामे से सड़कें संकीर्ण होती हैं। सड़कों में सुगम यातायात प्रभावित तो होता ही है, जाम की स्थिति भी बनती है। इतना ही नहीं, कई स्थानों में दो पहिया चार पहिया रिपेयरिंग की दुकानों के सामने या पंचर आदि बनाने की दुकानों में वाहन सड़कों में आड़े तिरछे खड़े होते हैं, जिससे वहां पर सड़कों के संकीर्ण होने से यातायात की स्वाभाविक गति तो प्रभावित होती ही है, सड़क दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। बिलासपुर शहर में ऐसी स्थिति लिंक रोड, इमलीपारा, मगरपारा, सीपत चौक, तेफरा, सरकंडा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तखतपुर, रतनपुर, सीपत, मस्तूरी में भी देखी जा रही है, जो बेहद खतरनाक है। इन दुकानदारों के साथ साथ वहां वाहन खड़े करने वालों को भी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि आपकी ये चूक अव्यवस्था के साथ साथ किसी की जान की भी दुश्मन बन सकती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार विशेषकर शाम या रात के समय बच्चे गली मोहल्ले की सड़कों में बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते देखे जाते हैं। सड़कों में लगातार विभिन्न प्रकार के वाहनों का आवागमन बना होता है, किंतु सड़कों में खेल रहे इन बच्चों को सिर्फ गेंद ही दिखाई देती है। कई बार इस प्रकार खेलते हुए सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, अतः अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान देवें, उन्हें खेलने के लिए मैदान में भेजें, ना कि सड़कों में। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ट्रैफिक अपडेट अभी आपने सुना उमा शंकर पांडे से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। अगला गीत अरमान मलिक की आवाज़ में है, रश्मि विराग के बोल, अमाल मलिक का संगीत, फिल्म का नाम है शेफ़।

लीजिए, सुनिए फिल्म मिर्जया से ये गीत, आवाजें सिद्धार्थ महादेवन और सैन जहूर की, गुलजार की रचना, शंकर हसन लॉय का संगीत।

मिर्ज़या फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें सिद्धार्थ महादेवन और साईं हुजूर की थी। गुलजार की रचना, शंकर एहसान लाय का संगीत। और अब इसी के साथ ही कार्यक्रम नए तराने यहीं समाप्त हुआ।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से।

ग्रेट फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: ये सुनिए, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग
1: तो
0: क्यों है।
1: वहाँ इंस्टेंटली सबने पसंद किया
0: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूं और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी,
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: लगता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी,
1: वाह,
0: दूर उफक में डूब
1: गया,
0: गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी जी
0: वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है, वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी।
1: क्या बात है,

0: है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
1: क्या बात।
0: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
1: वाह क्या बात है, ये सुबीर सेन की आवाज है
0: सुबीर सेन की।
1: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

अभी आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के खजाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
1: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए, इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा। हाँ, हाँ। अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ।
2: हाँ।
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
2: हाँ, हो जाता है।
3: जैसे
2: तो आप तो जानबूझ करके आए,
3: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे। हाँ। तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, गायक बन गया।
2: गायक बन गया,
3: ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
2: अच्छा।
3: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं ये कोई तमन्ना नहीं थी।
2: अच्छा।
3: साहित्य में अच्छा, जगह बनाना चाहता अच्छा, था।
2: ठीक ठीक।
3: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था। कविता लिखता था, शायरी करता था, अफसाने भी लिखे।
2: वाह।
3: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था।
2: ठीक।
3: जिसकी जगह कम होने लगी और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था आखिर, सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था
2: जी।
3: तो उस हलके में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी, कलम हमने कान पे रखी है।
2: हाँ।
3: हमसे भी कुछ लिखवा लो।
2: हाँ, ठीक।
3: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए।
2: अच्छा।
3: बिमलदा से आप शायद नाम
2: सुना,
3: हम बिमलदा कह के बुलाते थे और उनसे मिले। वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
2: कौन सा गाना?
3: बंदनी में मोरा गोरा अंग ले ले।
2: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
3: अब छोड़े जी क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय हुआ था।
2: हाँ।
3: और वो गाना लिखा और उन्हीं दिनों बिमलदा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला
2: जी।
3: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें
2: जी,
3: लगा कि ये कुछ भूखा है
2: जी।
3: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल? मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है
2: जी?
3: तो भाई जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहाँ दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
2: सही बात, सही बात।
3: तो उन्होंने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं।

0: वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ
1: जी।
0: और बड़ा अच्छा मौका था,
1: तो
0: जाहिर है हो
1: आप
0: गया।
1: वहां पहुंच गए, हो गया
0: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
1: जी।
0: कि लेखक की जगह अपनी है,
1: हाँ
0: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं है।
1: अच्छा
0: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में,
1: हाँ
0: वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगी।
1: अच्छा, हमारा तो फिल्म के हिसाब से
0: जहाँ
1: लिखना
0: वहां
1: पड़ेगा।
0: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा
1: सही बात है, सही बात,
0: और तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे
1: ठीक
0: किसी धुन में गुनगुनाऊं,
1: ठीक ठीक
0: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है,
1: हाँ
0: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
1: हाँ मतलब फिर आपने निर्देशन
0: तो
1: भी,
0: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने सीखना
1: अच्छा
0: शुरू किया और लिखते रहे साथ
1: हाँ,
0: में।
1: लिखते तो
0: तो
1: आप अब भी हैं
0: जब
1: और लिखते
0: वो
1: रहेंगे
0: जी
1: आप।
0: हाँ, तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
1: अच्छा, तो देखिए इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना। तो अब आप तो दोनों हैं, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान,
0: जी हाँ, दोनों
1: कभी
0: शख्सियतें
1: उनमें कोई क्लेश हुआ
0: जी।
1: लेखक और
0: वैसे
1: निर्देशक में?
0: छोटे जी, आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में,
1: अरे आप ही लोगों से
0: तो
1: समझना पड़ा
0: आपस
1: साथ साथ
0: में
1: बैठ के। हाँ
0: दोनों का झगड़ा तो होता है दोनों शख्सियतों
1: होता
0: का
1: है ना।
0: जी हाँ।
1: अच्छा
0: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझमें,
1: जी,
0: वो पकड़ लेता है, वो
1: आ
0: पकड़ लेता है
1: निर्देशक
0: इसलिए
1: को।
0: जी हाँ,
1: अच्छा
0: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है। जो बात आप कह रहे हैं, जो ख्याल कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए,
1: जी
0: कैमरा कहीं भी रख के
1: जी
0: आप बहला तो लेंगे देखने वालों को,
1: जी
0: लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आके पकड़ लेता है वो लेखक।
1: अच्छा
0: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा तो गुलजार भाई, अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है? जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर है?
0: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है
1: अच्छा
0: और रंगा रंग है
1: हाँ
0: और अंग्रेजी में
1: अच्छा
0: फैसिनेटिंग है,
1: हाँ भाई,
0: बहुत
1: अच्छा ठीक
0: फैसिनेटिंग है।
1: अच्छा
0: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए, कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पे कलम बंद कर लिया,
1: जी
0: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूँ और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूँ, उसके लिए
1: जी
0: मैं अकेला नहीं हूँ
1: अच्छा
0: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
1: हाँ
0: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और दूसरे
1: उससे, हाँ
0: कर्मचारी,
1: जितने
0: जिस तरह के
1: कर्मचारी
0: अपने
1: हैं
0: टेक्नीशियंस हैं
1: हाँ
0: जितने,
1: सभी उसमें शामिल हैं।
0: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे ना मिले और एक सम पे धा ना पड़े तो वो बात
1: हाँ तब
0: बनती
1: तक
0: नहीं।
1: बात नहीं बनेगी।
0: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को झुड़ना पड़ता है और सातों के सातों की उंगली वहीं पे आगे पड़नी चाहिए तब बात बनती
1: सही
0: है।
1: बात है, सही बात
0: तो
1: है,
0: इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है,
1: सही बात है।
0: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है, उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती हैं, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है। तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल जाते
1: हाँ
0: हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं
1: वो
0: वो
1: इसी से
0: फिल्म में
1: जुड़े,
0: एक
1: हाँ
0: में
1: एक साथ
0: जुड़े
1: जुड़े
0: हुए
1: हुए हैं,
0: हैं
1: एक साथ जुड़े
0: जी
1: हुए
0: हाँ।
1: हैं। अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना।
0: हाँ, बहुत चर्चा है
1: तो
0: सर इसकी।
1: आपका इसके बारे में क्या विचार है?
0: सर इसके विचार दो तरह से हैं।
1: हाँ पहली तरह कौन
0: पहली
1: सी
0: तरह
1: है?
0: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा हूँ,
1: अच्छा
0: तो या जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे ज्यादा
1: अच्छा
0: साफ सुथरी
1: ठीक
0: फिल्में बनानी
1: ठीक
0: पड़ेंगी।
1: ठीक ठीक
0: और दूसरी बात यह है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, वही लेखक का ख्याल,
1: जी
0: कि भाई ये है क्या ये जो वायलेंस है,
1: जी
0: तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे
1: अच्छा अच्छा
0: और वो प्रोपोगेट करते रहे हैं
1: अच्छा
0: और वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो
1: जी
0: ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल
1: अच्छा
0: जाओ।
1: ये चीज़ है।

0: उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
1: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
0: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है। और वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
1: जी,
0: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
1: जी
0: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
1: जी,
0: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि नहीं।
1: वाह वाह,
0: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: वाह,
0: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
1: जी
0: वो बनावटी रहेगा।
1: हाँ ठीक,
0: और
1: ठीक,
0: ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं। जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो,
1: जी
0: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और जो देखते हैं फिल्मों में,
1: जी
0: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे।
1: अच्छा,
0: शायद
1: अच्छा,
0: हों कहीं, मेरी
1: अच्छा,
0: नजर से नहीं गुजरा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
0: जी, फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है। आज से आज की मेहनत में मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
1: अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्में मेले देखे हैं। अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे।
0: जी,
1: तो वहाँ यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है, यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों का क्या विचार होते हैं?
0: खास तौर पे ताशकंद में
1: जी
0: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
1: अच्छा,
0: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
1: अच्छा,
0: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
1: हाँ,
0: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे एक तो राज कपूर साहब
1: जी,
0: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से यहाँ
1: यहाँ पे। वाह,
0: और जो नए अदाकार वहाँ गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
1: वाह वाह,
0: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहाँ दिखाई गई। जगह जगह गए हम
1: जी,
0: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
1: अच्छा,
0: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहां बेच सके।
1: अच्छा,
0: या उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
1: अच्छा,
0: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी करामद है।
1: बिल्कुल करामद है। और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
0: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
1: हाँ, है ना?
0: और
1: हाँ,
0: दोनों को जांच लेना चाहिए।
1: हाँ, जांच लीजिए।
0: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
1: जी
0: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
1: ठीक,
0: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
1: जी,
0: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
1: ठीक,
0: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगी या एक बार तो ये महसूस होने देंगी कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची।
1: वाह, क्या बात कही।
0: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपकी कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
1: ठीक,
0: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ और ये, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए।
1: जी,
0: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है।
1: जी,
0: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
1: अच्छा,
0: लेकिन पहुंच कम हुई है।
1: हाँ ठीक है, तो
0: मतलब उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद होगा।
1: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था।
0: जी हाँ।
1: और आप कवि हैं, शायर हैं।
0: जी हाँ।
1: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी, आपकी जबानी तो क्या हर जाए।
0: छोरे जी, हर्ष तो कुछ नहीं
1: जी,
0: अच्छी बात है।
1: अच्छी बात है ना।
0: अगर उन्हें अच्छी लगे।
1: अरे लगेगी साहब, जरूर लगेगी।
0: नज़्म में आपको सुना देता हूँ।
1: अच्छा।
0: और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
1: हाँ, पहुंचे रहेगी।
0: वो जो शायर था।
1: अच्छा, वो जो शायर था।
0: बहकी बहकी सी बातें करता था। मेरी तरफ ना देखिए। वो जो शायर था, बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें।
1: वाह,
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी

0: की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते, और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुमता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह।
0: हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुलजार भाई आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी।
2: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई, वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में VSK ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मॉनसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं तेज हवा चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। विश्व

0: बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से लोगों को बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था होगी और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे

0: को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे, फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की जो इबारत है वो है, कितना अच्छा हो कि आ जाए रिमझिम फुहार। बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बूंदों का है त्योहार। बादल की डोली पर आती है बरखा रानी, मन झूम उठता है जब बरसता है पानी। तपती धरती कर रही शिद्दत से इंतजार, कब छाएंगे मेघा, कब होगी बूंदों की बौछार। इस बार सावन ऐसा आए, घटाओं के संग खुशियां लाए। चलो बारिश का त्योहार मनाएं, हम सब मिलकर बारिश के गाने गाएं। आसमां अब के धरती पे लिख दे हरी कहानी, झूम के छाए घटा और टूट के बरसे पानी। अब समझ गए होंगे कि इतने सारे शब्द हैं जिनके जरिए हम गानों की डोर को तान सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कौन कौन से शब्दों पर आज गाने हो सकते हैं, पर यह तो तय है कि आज बारिश के इंतजार की बात है और इतने सारे शब्द जिन पर बहुत सारे गाने हो सकते हैं। सबसे पहले वो बात जो हमारी और आपकी, हम सबकी बात है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहला गाना जो है वो गाइड फिल्म से आ रहा है। गाइड फिल्म किसके उपन्यास पर बनी थी, एक तो ये बात, दूसरी देवानंद और वहीदा रहमान के किरदारों के नाम क्या थे इस फिल्म में।

जरा सोचिए कि बिल्कुल जरा सा 2 मिनट का ये गाना है, लेकिन ये गाना बारिश के लिए हम सब की पुकार को एक तरह से आवाज देता है और बहुत सारे श्रोताओं की आज की इबारत को लेकर

कमेंट आए हैं, और इसके अलावा हमारे सवालों को लेकर भी बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, और ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आपने जैसे गाइड फिल्म का गाना सुना अल्लाह मेघ थे, इसी तरह का एक और गाना था, आपको बताना है फिल्म का नाम।

पलकों की छाओ में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा, पलकों की छाओ में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छाओ में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसडी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है, आई बहार आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से

थोड़ी राहत मिलेगी, भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाजा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है। बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है। मिट्टी की पहली सोंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ी है और हालत खराब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है, दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीला सफर की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना, और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है, एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नजर आते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं, पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में

उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं, पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी, क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है। वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते, और जब वो चली जाती तो उसे रोकते बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया। और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं, जैसे निस्दिन देख रहे हों बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नजरों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनके नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं और वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करोंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती है कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर बरस गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतजार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफर कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है। यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीजें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी। ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी हैं।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो। उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहें फैला लें और जितना चाहें सिकोड़ लें। चाहें तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है, पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए। जैसे ही वो मुड़ती है, कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है, वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है, हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते, उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की। आज त्रिवेणी में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ते दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन

0: श्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल The Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

0: ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक

0: अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना, और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मन चाहे गीत। मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मन चाहे गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: हैं। मुंजय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंदगढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के, ये श्रोता हैं समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मन चाहेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी,
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जूते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं यह यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा न।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का पालन हो।

0: काशी?
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी?
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थी भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: भाई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। तो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान्य, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज

0: जिनकी आत्मा है, वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरु वंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
2: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: तू कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी। जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे वो और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है। जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं। वो

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्यश्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है।

0: उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
1: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
0: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
1: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
0: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
1: पूछो।
0: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
1: गांधारी।
0: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्यश्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
1: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
0: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ, राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ, आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
0: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: मैं
1: धृतराष्ट्र।
0: ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है। आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताकृत भीष्म ऐसा नहीं कर सकते।

0: माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती, उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल हरिण भ्रमर न जाने किस किस से दी थी। गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी।
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
0: क्या
1: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है, मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं है?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी, मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया, यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: नहीं महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूं।
0: गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा, ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सच, असहनी है ये सच।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या

0: उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा।
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए।
0: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी, यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं।
1: अर्थात हस्तनापुर का भावी शासन?
0: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
0: धैर्य रखो देवी गंधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
0: कहो सूत।
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक,
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर क्या है?
1: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज ध्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकता।

0: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
1: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
0: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
1: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
0: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज,
1: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
1: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
1: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधू के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
0: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
0: अर्जुन ने?
1: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
1: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
1: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
0: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं,
1: वो पढ़े लिखे भी नहीं।
0: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार को, बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं, वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, लगान में कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: आर डी
1: बर्मन साहब का। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर

0: एक गाने में आज भी वही कशिश है,
1: करेक्ट
0: वही ताजगी है, जबकि
1: करेक्ट
0: वो उनकी साज से निकले होंगे।
1: करेक्ट
0: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना
1: हाँ
0: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
0: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूं
1: हाँ,
0: आपने।
1: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल एज अ कोरियोग्राफर। समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वाज मोर ऑफ अ फील, फील का गाना था।

जो एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था.
0: अच्छा अच्छा
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियानवी के गाने, सभी मुझे पसंद थे. एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा.
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी. तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है? सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था. सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है. तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे.

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी
0: नहीं, फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं
1: जिसको। अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग यू नो डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ। मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आकर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस कर तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर

अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोचता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो

0: आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें, तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं, और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हैं, कई बार अंदर से आ जाता है और 1 सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में, ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया था कि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में चल

0: एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता
1: कर
0: हुआ
1: रहा है।
0: नजर आता है।
1: हाँ
0: आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती
1: करेक्ट।
0: है?
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है। चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर, वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है। हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं, ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है। वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना, वो एकदम जूम इन करके झामे, झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम, वही फॉर्मेट, वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यहां झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है, लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है। आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8

0: काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगते हैं कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है।
0: हाँ
1: बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको
0: हाँ
1: घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों,
0: हाँ
1: गाने तो विविध भारती के ही बजते
0: करेक्ट
1: हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है
1: हाँ
0: जो मैंने नौरा के साथ किया, वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके
1: कौन
0: हैं।
1: सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है वो वाला गाना,
1: अजनबी।
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: पा। सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: You said Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं आप.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बींग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनकी फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अयर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में, घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अयर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेक.

0: दैट इज वन। मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था
1: फेस करता
0: ये
1: था।
0: कर पाता था। तो अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे ना तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं। उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना उसी में पैसा है, उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है। इवन विथ रेखा शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर, उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन वैजंती माला इज नेक्स्ट लेवल, हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल। ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि
1: डांस
0: पहले
1: है।
0: डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे। कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे, तो उनको समझ थी। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज आई वुड से इज वैजंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी। वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वॉज आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे।
1: एक और नाम है पद्मिनी।
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी। सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो, सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन। और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी। वेर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, खड़गवा, रामेश्वरपुर, जाम दोहर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, तीढ़ाप, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टान

0: द्वारा साझा पानी कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल के छाल, धरमजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये चचिया, बैगामार, तौलीपाली, गेराव, बताती, कोरकोमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, उकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 61 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदु चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोड।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

राम राम संगवारी हो। ग्राम सभा किसानवाड़ी कार्यक्रम के सुनैया जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के राम राम। खेत के तैयारी करबो अच्छा जोत के मादा भरबुन, खेत के तैयारी करबोन अच्छा जोत के मादा भरबुन, लगाबोन हरदी और अदरक जेखर मांग आठो काल बारो महीना बने रथे। तो किसानवाड़ी कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई हो, आप मन खरीफ फसल के तैयारी तो करें शुरू कर दे हा। फिर जहां तक हमन बात करबो मसाला वाले फसल हरदी और अदरक, एकरो खेती के रकबा हमला बढ़ाना है भाई बहनी हो। काबर के बाजार मा ये जिन अदरक के बात करबो वो हम माढ़े च नहीं पावे, अबड़ी च मांग रहे जेखर। और ओसहा दवाई ले भरपूर हरदी और अदरक के खेती के बात करी तो हमारे क्षेत्र मा बहुत ज्यादा एकर संभावना है। खेत के अच्छा तैयारी करे के बाद प्रमुख बात आते के अच्छा किस्म और बीजा के चुनाव के मके संगे संग स्वस्थ और पुष्ट मोटा बीजा राइजोम के चुनाव हमारे किसान भाई मन ला करना चाहिए। बोए के पहली खेत ला अच्छा तैयारी करे।

के बाद बिझाला विषाणु जीवाणु ले बचाए बर उपचारित करना बहुत जरूरी होते। सड़े गले गंदा बीज के चुनाव हमारे किसान भाई मन ला नहीं करना चाहिए। माटी और गंदगी ले बिझाला साफ रखो और छाए महत्वपूर्ण सुखा लो। फफूंद नाशी पर जहां तक बात करबो, मेनको जेब नाम की जिन दवाई है ओकर 1 ले 2 किलो ला 1 किलो बीजा के हिसाब से मत किसान भाई मन 20 ले 25 मिनट बढ़िया बोर के रख दे। फिर जैविक उपचार के मन बात करथन किसान भाई बहनी हो तो हरदी और अदरक के बोए के पहले उपचारित करे बर ट्राइकोडर्मा बीडी नाम के जिन दवाई है ओकर आप मन 3 ले 10 ग्राम 1 लीटर पानी के मान ले आप मन बढ़िया लेके जैविक उपचार कर सकत हो। बीजा ला 10 ले 15 मिनट तक डुबो के आप मन छाँव में सुखो लो। खेत में पानी झन भरा ये बात के पहले ले चेत हमर किसान भाई बहनी मन ला करना चाहिए। फिर कथे न सियान मन के जैसन किस्म वैसे उत्पादन। हरदी के जहां तक किस्म के बात करबो, सुवर्णा जिन्हा रोग रोधी की समय यह नगदेश कर उत्पादन देते। सुदर्शन राजेंद्र सोनिया ये किस्म के चुनाव करके हमर किसान भाई मन बढ़िया एकर बुआई कर सकत है। अदरक के बात करबो तो नादिया जिला बहुत अच्छा माने जाते, एकर उपज घलो बढ़िया होते। सुप्रभा ये किस्म के चुनाव करके हमर किसान भाई मन अदरक और हरदी के बोए के पूर्व तैयारी कर सकत है। स्वस्थ बीज के चुनाव करथन तो निश्चित रूप ले उत्पादन अच्छा हो ही। फिर भाई बहनी हो आप सब जानत हो कि हम सब ला चारा के प्रबंधन घलो डर हने ध्यान दे के जरूरत है। आज बढ़िया हम आप मतलब भेंट वार्ता सुनवाथन खरीफ फसल में उन्नत चारा प्रबंधन तकनीक ए विषय में विशेषज्ञ हवाए डॉक्टर कृष्णा डायरे अतिथि वैज्ञानिक हो आप मन शस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। और लेवाओ आप मन जीतू भैया चर्चा ला शुरू करा जम्मे किसान भाई बहनी मन हमन कले चुप सुनाथन।

0: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आप मन जानता हमन आप मन बर बढ़िया बढ़िया आनी बानी के खेती किसानी के विषय ला, समसामयिक विषय ला लेके आत रहन। आज ऐसा है सुघर विषय लेके आए हैं आपन बर, खरीफ के मौसम अवैया है। तो आज के विषय है खरीफ मौसम में उन्नत चारा प्रबंधन तकनीक कौन ढंग ले करे जाए। ये खास कार्यक्रम है जौन किसान भाई मन पशु पालक के काम करते हैं, पशु पोसे हैं। अबे विषय ऊपर सुघर जानकारी दी बर हमारे सो फोन लाइन से जुड़ा थे डॉक्टर कृष्णा जी, ये मने अतिथि वैज्ञानिक सस्य विज्ञान के कृषि महाविद्यालय बिलासपुर ले। आप मन के स्वागत है कार्यक्रम में, आप मन ला राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार जीतू भाई, किसान वाणी के इस विशेष अंग में आप सभी मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप मन के दोस्त डॉक्टर कृष्णा।
0: डॉक्टर साहब, आज हम जानबो के भाई हरा चारा उत्पादन तकनीक का होते, हरा चारा का होते।
1: किसान भाइयों, जब भी हम खेती किसानी की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान किसमें चला जाता है कि हम मुख्य फसल को पहले ज्यादा लगाए, जिसमें कि हम खरीफ मौसम में धान लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, जिससे हमें सबसे ज्यादा पैसा मिले। लेकिन हम का गर्थन कि हमारे सबसे बड़े पशुधन है जेकर से हमें बहुत ज्यादा आमदनी मिलते, ओला हमन हा भूल जाथन। और साथ ही साथ हमन हा हरा चारा के उत्पादन ल तको भूल जाथन। का होते कि एकर से के जब हमन हा पशु पालन कर ही हन, साथ में खेती किसानी करथन, ओकर साथ में पशु पालन तको करथन, तब पशु ल हमन हा सूखा सूखा चारा खवाबोन तो कहाँ लगाए है दूध दही अच्छा ले। हमन हा हरा चारा जब लगाबोन हमन अपन खेत में त ओला गाय ला खिलाबोन तो गाय है ज्यादा दूध देही, एकर से का हुई हमन ला बहुत ज्यादा फायदा होही। अब फायदा के साथ साथ का हुई कि हमन हा पशु ला खिलाए बर जिन बाहर से दाना खरीदथन ओला लेला नहीं पड़े, या हम ओला कम मात्रा में लेबो। यदि हमार पास हरा चारा उत्पादन हो जाये, हमार पास हरा चारा रही तब मन हरा चारा ज्यादा खिलाबोन, और जिन दाना के खर्चा है बोलता वो खर्चा हमार कम हो जाये और हमन ला दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा फायदा होगी।
0: हमें पूछबो कि अभी तो समय है, अभी तो घाम बढ़िया पटपट ले पड़त है, तेज धूप है, तो आगो हमन ला लेना है हरे चारा, तो खरबर खरीफ बर खेत की तैयारी करत खानी कई पैसा मन ला जोताई करना चाहिए, और प्रति एकड़ जिसे किसान भाई मन सो गोबर के व्यवस्था है तो कतका डालना चाहिए।
1: बहुत सुघर सवाल है जीतू भाई,

0: ये सवाल है सब किसान मन के मन में तो हुआ थे कि हमन हाँ अपन खेती किसानी के दिन में चारा बर खेत लमन कैसा तैयार करबो। तो एमा का करथन हमन हाँ जब चारा वाले फसल ले बर तैयार करथन तो हमन हाँ जिन हमर मेन फसल है ओला लगाए बर जैसे खेत के तैयारी करथन वो इसने ही हमन हाँ चारा लगाए बर तको तैयारी करथन।
1: अच्छा
0: एमा का करथन हमन हाँ जब हमार खेत खाली होते गर्मी में तो हमन हाँ गहरी जुताई कर देथन। गहरी जुताई करे के बाद हमन हाँ ट्रेक्टर कल्टीवेटर से नौनस्थी जेन ला बोलथन हमन हाँ ओकर से 2 से 3 बार जुताई करके खेत तैयार हो जाते। हमन हाँ जिन गोबर खाद है अभी फार्मर के पास किसान भाई के पास जेकर पास अवे वो ओला 4 से 5 ट्राली 1 हेक्टेयर में डाल के मस्त मिला के खेत ला तैयार कर ला।
1: अच्छा
0: खेत तैयार करे के बाद जिन हमार हरा चारा हवे तो कुछ हरा चारा ऐसे हवे जिन ला हमन हाँ बीज के द्वारा बुआई करथन। कुछ हरा चारा ऐसे है जिन ला हमन हाँ ओखर जड़ के कटिंग स्लिप
1: अच्छा
0: ओखर से भी हमन लगा सकथन। तब मेन ये बात ये ध्यान देते कि हमन हाँ कौन से हरा चारा लगावथन कि हमन हाँ दलहनी हरा चारा लगावथन कि अदलहनी हरा चारा लगावथन। और जिन खेत ला तैयारी करे के सिस्टम है या जिन तरीका है वह सबो फसल बर एक ही हवे एक ही
1: अच्छा
0: टाइप के तैयारी करना है। यदि हमन हाँ बीज से बुआई करत हन तो हमन हाँ सीड ड्रिल से बुआई कर सकत हन।
1: अच्छा
0: सीड ड्रिल से बुआई करके अच्छा से जर्मिनेशन आ जाते ओकर और अच्छे से ग्रोथ हो जाते। कुछ ऐसे हरा चारा है जैसे हमार मक्का है बाजरा है ज्वार है और जिनला संकर हाथी घास के थन जिनला सुरान घास बड़े बड़े होते ओ मन ला खेती करे बर जिनला मेड़ पद्धति में मन खेती करथन। ओ
1: अच्छा
0: ट्रेक्टर से हमन हम मेड़ बना देथन और नाली बना देथन। तो जिन मेड़ बनाबो तो मेड़ में हमन हाँ जिन ये मक्का है ज्वार है बाजरा है सुरान घास है या संकर हाथी घास है ये सब ला हमन हम मेड़ में लगाबो।
1: जिन बड़े बड़े होते तेन मन ला।
0: हाँ जिन बड़े बड़े होते ओला हमन हम मेड़ में लगाबो और जिन हमन नाली बची तो नाली में हमार बरसात के पानी हाँ निकल जाए।
1: निकल
0: सेखर से का
1: जाएगा।
0: होगी कि हमार जिन सीड हवा है ना जिन बीज है जिन्हें लगाबो तेना सड़े नहीं।
1: बहुत सुखर जानकारी दी है। जैसे अपन आनी बानी के बीज बताया है, जैसे मक्का है, लोबिया है, सब तो मिल जाते जैसे आजकल
0: हाँ
1: बाजार में। सुडान के बात करे है, नेपियर के बात करे है, एकर बीजहा के व्यवस्था कहाँ ले करे किसान भाई मन?
0: जब हमारा बात करथन संकर हाथी घास के ये हमारे बहुवर्षीय चारा वाले फसल है। यदि हमन हाँ इला एक बार खेत में लगा दें एकर रूट ला काट काट के तो ये हमारे बहुत टाइम तक लगेगी। अब यह एकर से हमारे पूरा साल भर हरा चारा की प्राप्ति तक होते। तो एकर बर सुडान जिन संकर हाथी घास है एकर यदि बीज चाहिए तेला सीड्स के द्वारा हमन नहीं लगावन बीज से जनरली ले हमन सबसे ज्यादा लगाते हैं रूट कटिंग से। तो एकर बर हमन आप मन हा संपर्क कर सकत हो कृषि महाविद्यालय रायपुर
1: अच्छा
0: एग्रो सस्य विज्ञान विभाग में
1: अच्छा
0: वहाँ हवाए हमर डॉक्टर साहब डॉक्टर SK झा सर
1: जी
0: जे हा देखते पूरा के पूरा चारा उत्पादन तकनीक ले छत्तीसगढ़ में देखते रिसर्च के पर्पस में और किसान मन के फील्ड में और खेत में तको लगवाते ताकि हमारे
1: अच्छा
0: किसान भाई मन हा के हरा चारा के ऊपर हरा चारा लेकर के थोड़ा से जागरूक हुए और अपन अपन जिन कोई पशु रखे घर में मतलब हरा चारा खिला सके।
1: बहुत सुखर जानकारी दी है आपन। तो भाई हरा चारा के व्यवस्था भी बताया और पता ला भी बता दिया कि भाई किसान भाई मन कहाँ ले ला जुगाड़ कर सकते है, कहाँ ले ले सकते। जैसे हम कोनो भी हरे चारा के बीज हल लगाए जैसे मक्का या जेन बीज ला बीज के माध्यम से बोआ था, तो का ओला कुछ जैविक कल्चर से उपचारित करना जरूरी है या फिर केमिकल उपचारित करना जरूरी है? ला बढ़िया बतावा।
0: ये तो बहुत अच्छा सवाल है जीतू भाई। और ये हा किसान मन हा सब ये जिन बीज उपचार है ना ओला छोड़ देते करे नहीं। तो हमन हा जब कोई भी फसल हुआ चाहे हमार हरा चारा हुआ जब बीज बोवत हन हम हा जिन हमन बीज द्वारा लगातन तो ओखर बीज ला उपचार करना चाहिए हमन ला। और ओला बीज उपचार करे बर हमार बिलासपुर कृषि महाविद्यालय में NPK कंसोर्टियम जिन में
1: अच्छा
0: हमन हा राइजोबियम और PSB कल्चर PSD कल्चर ये सब लोग बोलते हैं वो तीनों ला मिला करके हमने बिलासपुर कृषि महाविद्यालय में NPK कंसोर्टिया बनाया है।
1: अच्छा
0: इला हमन हा सीड ट्रीटमेंट कर लेने कर से पहली उखर बाद हमर जिन फसल मा जिन हमर हरा चारा मा फफूंद द्वारा कुछ बीमारी तक लग जाते फफूंद बीमारी ल बचाए बर हमन हा ट्राइकोडर्मा से बीज ल उपचार कर दन
1: जी।
0: लेकिन ट्राइकोडर्मा ल उपचार कब करबो जब हमन हा एनपीके ले सीड

0: पहली टी उपचार करबो ओकर बाद हम ट्राइकोडर्मल उपचार करके बुबोन सेट ल। यदि हम ऐसा करबो एनपीके कंसोर्टियम से बीज ल उपचार करबो तो जिन हमर जतकन हम उर्वरक डालत हन ओकर 20 से 30% उर्वरक के हमन ला कम डाले लगे खेत में।
1: अच्छा,
0: तब एक से का हुई किसान मन ला डायरेक्ट या सीधे तौर पर उखर जिन लागत के उर्वरक के वो लागत उखर बहुत ज्यादा कम हो जाती। यह कारण किसान भाई मन जब भी हरा चारा के खेती करत हो या कोई भी फसल लगा हुआ तो खरीफ मौसम में तो आप मन बीज उपचार करके जरूर लगाए करो।
1: अच्छा, ये तो है इस बीज उपचारित करके व्यवस्था। अगर हम मक्का लोबिया ज्वार के खेती करत हन हरा चारा पर एकड़ पाछू कतका एकर बीजाला रखी?
0: अब ये है जीतू भाई के किसान भाई मन हरा चारा लगाए बर जिन मक्का के उपयोग करते है ना मक्का के ज्वार के तो का उला मक्का बस लगावत के एक एकड़ में वहाँ एक हेक्टेयर में किसी पर लोबिया बस लगावत थे। हम किसान मन ये सुझाव देते हैं आप मन दलहनी फसल के साथ या अदलहनी के फसल के साथ दलहनी फसल तको ले जैसे कि मैं एक ठन एग्जाम्पल बतावत हूँ। यदि हम मक्का लगावत हन तो मक्का के हमन ला लगही 12 से 15 किलो बीज और लोबिया के लगही 8 से 10 किलो बीज एक एकड़ में अतक बीज लगही। अब वो लगाही कैसे एला बता था मैं कि हमन जब खेत तैयार हो गए हमारे खेत है ना हमन मेड़ बना दे और नाली बना दे या फिर मेड़ नाली नहीं बनाए तो हमारे खेत समतल कर दे तो हमन जिन मक्का ला लगाबो ओला हमन 2 मीटर के दूरी में लगाबो पंक्ति से पंक्ति के दूरी 2 मीटर लागबो और पौधा से पौधा के दूरी ला हमन रखबो 60 सेंटीमीटर।
1: ठीक,
0: तो ये जिन पंक्ति से पंक्ति के दूरी ला रखबो 2 मीटर मक्का के 2 पंक्ति के बीच में जो हमारे खाली जगह बचगी वो खाली जगह में हम लगा दे लोबिया अच्छा से न्यूट्रिएंट डाल दे हमन पानी दे दे। अब खरीफ मौसम में तो पानी की कमी नहीं रहा है लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब पानी नहीं गिरा है बहुत टाइम तक पानी नहीं हुआ वर्षा नहीं हुआ तब फिर हमें देर लगते तो इतना यदि स्थिति आएगी तो 1 से 2 सिंचाई देने लगी। यदि हम एक साथ ये जिन दलहनी और अदलहनी मिला के हम हरा चारा के खेती करबो देखा से का हुई कि हम तो जिन हमार मक्का है उखर से चारा मिला थे प्लस उखर साथ साथ लोबिया से तक हम हरा चारा की प्राप्ति हो जाएगी।
1: बड़ा सुखर बताया है। का कुछ हो जैसे यूरिया के बात होते तो फसल बढ़वार करे पर हमन रासायनिक उर्वरक में यूरिया दे सकत हन और कतका मात्रा में देना है एकड़ में?
0: जब हम हरा चारा लगातन तो चारा लगातन तो हम कैसे खिलातन हम पूरा तो नहीं काटन मतलब हम ऊपर से जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर ला छोड़ के हमन काट के खिला था तो जे यूरिया के हमर हवी तो जैसे हम कोनो फसल में मक्का में 120-140 देवत हन हमन किलो एक हेक्टेयर में तो जेन हमर फास्फोरस हवे और पोटास हवे एकर पूरा मात्रा और नाइट्रोजन के आधा मात्रा ला हमन बीज ला जब बोबोन दे देथन तभी दे देथन और जेन हमर नाइट्रोजन के 50% बाचे थे तो जब हमर फसल 20 से 25 दिन के हो गए तो हमन ओखर ग्रोथ ला बढ़ाए बर यूरिया ला दे देथन।
1: अच्छा,
0: और एक बात और आते कि यदि हमन यूरिया ला ज्यादा मात्रा में यदि डालबो तो ओखर से हमन ला नुकसान है पौधा में। जब हमन यूरिया ज्यादा मात्रा में डाल देबो तो पौधा में यूरिया एकत्रित हो जाएगी नाइट्रेट के रूप में तो वो जब ओला काट के हमन हरा चारा के रूप में जब पशु ला खिलाबो तो पशु के शरीर में जाके वो नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर दी।
1: अच्छा,
0: ओखर से का हुई हमर पशु बीमार हो जाएगी तो एक से हम नाइट्रोजन के एप्लीकेशन ज्यादा नहीं करना चाहिए हरा चारा के उत्पादन में। अब मोर एक ठन और सुझाव में ये हवे कि जब हमन हरा चारा लिए हमन लगा देन अब पहली कटिंग हमन कब करथन 60 से 70 दिन में हरा चारा के पहली कटाई करथन तो कटाई करे से पहली जब हमार 50 से 60 दिन के हवे हरा चारा तो वो टाइम हम कोई भी पत्ती में छिड़काव कोई भी उर्वरक के नहीं करना चाहिए ठीक। अब जब हमार कटाई हो गए ना फसल हमन जब कटाई करबो तो कटाई करे बार विशेष ध्यान देना चाहिए कि 8 से 10 सेंटीमीटर जमीन से छोड़ के हमन ला कटाई करना चाहिए हरा चारा की। तो ऐसे में का हुई जब हमन 8 से 10 सेंटीमीटर जमीन से छोड़ के कटाई करबो तो जिन कल्ला है जिन ऐसे काटे के बाद जिन बच जैसे जमीन में ओखर से मस्त नवा नवा कल्ला निकल जी ओखर से फिर से ग्रोथ होगी।
1: अच्छा,
0: जेन ए पत्ती में छिड़काव हो गए ओला हरा चारा काटे के बाद तुरंत हरा चारा काट दे, नमी हवे तो ठीक है, नहीं है तो इरीगेशन करबू सिंचाई देबू, तो सिंचाई दे के बाद मस्त फिर से हमन या तो हमन वर्मी

0: आज के फूल जर स्प्रे करन या तो हम जीवामृत के करलन या तो हमन काउजुरिन के करलन, तो ये तीनों के कर्बोन तका हुई ये हमर कोनो भी रासायनिक खाद नो है, ये है हमर जैविक खाद है।
1: जैविक जीनी से हो तो
0: हाँ, तो जैविक जीनी से एला हम छिड़काव करबो तेखर से हमर जिन हरा चारा के उखर ग्रोथ हवा वो बहुत अच्छा होगी, और वो हरा चारा हम काट के जब पशु ला खिलाबो तो उखर हेल्थ में कोई प्रकार के प्रभाव नहीं पड़े, हमारे पशु हा स्वस्थ रहेगी। हरियर चारा ला खवाबो तो हमार रोज के जिन दूध देवत है गाय है पशु हमार वो हमार दूध उत्पादन बढ़ा देगी।
1: देखा भाई किसान भाई हो, जब अतका व्यवस्था अतका हमन ला लाभ मिले तो काबर नहीं अपन खाली जमीन में खाली खेत में हरियर चारा के व्यवस्था करिए और साल भर पशु ला अपन हरियर चारा खवाई। तो आज हमर विषय रही से खरीफ मौसम में उन्नत चारा प्रबंधन तकनीक। सुघर जानकारी दिन हमर डॉक्टर कृष्णा जीवन इमन रहिन है अतिथि वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जित्तू भैया जिन हमन ला बुलाए हाव किसान मन की समस्या के समाधान करे बर, उखर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार जित्तू भाई और किसान भाई मतलब सबको जय जोहार।
2: हाँ तो किसान भाइयों कतक सुघर जानकारी आप मन भेंट वार्ता में सुनत रहा खरीफ फसल में उन्नत चारा प्रबंधन के तकनीक। तो जिन पशुपालक संगवारी है ते मन बढ़िया एकर खेती करे और जिन मन सामान्य किसान है तिनमन कर सकते थे व्यवसायिक खेती कर सकते थे। आज के विशेषज्ञ से डॉक्टर कृष्णा डहरी जी मन जिनमन अतिथि वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में और उनकर तो फोरिया फोरिया के पूछत रिसे अभिनय गौरहा मतलब जीतू भैया मन बने लागी से ना। अब आप मनला ये संदेशा सुनाथन सुला।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पम्प का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पम्प का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीना सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
6: क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
7: परम तो सभी डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: माटी मांगे मेहनत संगी और मेहनत

करे किसान। हमर किसान भाई मन आठों काल बारह महीना खेती करे बर नहीं ढेरियावे अब काबर ढेरियाही। हम तो ये कहबो भाई के आप मन नान नान बारी कोला में आनी बानी के साग भाजी के खेती करके अपन आमदनी ला कई गुना बढ़ा सकत हो। छत्तीसगढ़ में 36 किस्म के भाजी हमर मान बढ़ावा थे। छत्तीसगढ़ में 36 किस्म के भाजी हमर मान बढ़ावा थे। लाल पालक पटुआ चौलाई खेड़ा मन आमदनी ला बढ़ावा थे।

एक गीतला स्वरदेवत रिन्हे नरेंद्र यादव कांति मरकाम सुशीला सुनवानी मन अब आप मला मौसम और मंडी के संगे संग सामयिक सुझाव देबो मिले जानकारी के अनुसार मौसम की जानकारी ऐसा है अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस हल्का बारिश की संभावना है बिलासपुर संभाग में और जहां तक बात करबो मंडी के तो बिलासपुर मंडी तिफरा मंडी में सब्जी के भाव हमला मिले हैं रमकेरिया 2800 रुपये क्विंटल पत्ता गोभी 1200 रुपया फूल गोभी 1600 रुपये क्विंटल हरियर मिर्चा के भाव 2200 रुपया नीमाऊ के भाव 7500 रुपया आलू 1500 रुपया गोंदली के भाव घलो 1500 रुपया भाटा के भाव हमला मिले है 1000 रुपये क्विंटल और धान मंडी में सामान्य धान के भाव 1910 रुपये क्विंटल कटघोरा मंडी के जहाँ तक बात करो किसान भाई बहनी हो तो धान के भाव 1900 ले 2200 रुपये क्विंटल जोंधरी के भाव 2300 रुपये क्विंटल गेहूँ 2700 रुपये क्विंटल चना के भाव 5600 रुपये क्विंटल राहर के भाव 7000 क्विंटल और सोयाबीन के भाव 4700 रुपये क्विंटल गोंदली के भाव 1600 रुपये क्विंटल मुंगेली मंडी के हम बात करें तो धान 1850 रुपये क्विंटल गेहूँ के भाव 1840 रुपये क्विंटल चना देसी के भाव 5460 रुपये क्विंटल राहर के भाव

1,236 रुपए क्विंटल और लाख के भाव हमला मिले है 2,050 रुपए क्विंटल। सामयिक सलाम हम किसान भाई मतलब ये कहना चाहतन कि अभी बीच बीच में जिन पानी गिरे है तो संगवारी हो आपन अकरस जोताई कर सका था और जिन किसान भाई मन अगर थरहा लगाना चाहते तो धान के अच्छा किस्म ला उपचारित करे के बाद या फिर 17% नून के घोल उपचारित करे के बाद हमारे किसान भाई मन उमा थरहा के तैयारी कर सकते थे। फिर पानी निकासी घलो के व्यवस्था हमारे किसान भाई मन पहले करना चाहिए। थरहा लगा के बढ़िया उद्यम हमारे किसान भाई मन करना चाहिए। उमा गोबर खातु है रासायनिक खातु है के व्यवस्था हमारे किसान भाई मन पहले ले करना चाहिए और उमा खातु माटी के संगे संग खरपतवार मत हो ये बात के ध्यान रखे। हरा चारा के खेती घलो हमारे किसान भाई मन कर सकते है। दलहनी तिलहन के खेती करे के तैयारी हमारे किसान भाई मन घलो कर सकते है। ये ढंग ले बढ़िया आप मतलब बढ़िया जानकारी दें और एक संग आज के किसानवाड़ी कार्यक्रम ले घर जाए के विदा दा राजू भैया कार्यक्रम सुनिया जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। साथियों, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म अनुराग से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की रचना और एस डी बर्मन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश कवाणकर, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से हमारे श्रोता साथी हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, महेंद्र, विक्रांत और इफ्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी रॉय, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर, सोंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, सीता, गीता, जसवीर और जस्सी, चिरमरी कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म अनुराग का ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https.awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया

0: आया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, कालेगांव जफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सर्वद देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्कीन, खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, सीतामढ़ी बिहार से फरहत, नुसरत और इनके साथी हैं, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, वीरमगांव राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म अगर तुम न होते का ये गीत। स्वर दिया है किशोर कुमार ने, गुलशन बावरा की रचना है और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति राधे, दीपक अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से हमारे श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल और सावित्री देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगला और राजेंद्र शाह, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम ठांडी और वामिका और वाणी ठांडी, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म शागिर्द का ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मेल करे की सुने आकाशवाणी बिलासपुर से। कार्यक्रम के इस भाग का आखिरी गीत लीजिए सुनिए फिल्म आज की आवाज से। महेंद्र कपूर की आवाज है, हसन कमाल की शब्द रचना, रवि का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू डब्बू, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और साथ में है सुच्चा सिंह पाठक, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन और युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, निखिल, निधि, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला, आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर दिवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और रीचा दिवांगन, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमश खत्री, अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, लुथरा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका, लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविरा सिंह, रिंगनी से हमारे श्रोता साथी हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म आज की आवाज का ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये अंक अब यही समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आज शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करेंगे सुने। रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंकज उदास की गाय गीत और गजलों को। रात 8:15 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे रात 9:15 से रात 11 बजे तक। समाचारों का अनुप्रसारण प्रतिदिन की तरह निर्धारित समय अनुसार किया जाएगा। अब जानकारी देते हैं कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल शाम 6:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एस्बेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। कल शाम 6:05 पर कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। श्रोताओं, आगे की जानकारी इस अंतराल के बाद।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कल सुबह 7:10 पर आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर कल खेती की बात में जानकारी दी जाएगी, खेती में सूक्ष्म जीवों के कार्य विषय पर वाचन स्वर

0: अभिनव गौराहा का होगा। 6:45 पर कार्यक्रम चिंतन में विषय होगा स्वाधीनता संग्राम और आज की पीढ़ी। आलेख स्वामी सत्य स्वरूपानंद का होगा। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ सुनिएगा। कल 8:30 पर आनंद लीजिए का कार्यक्रम माटी के स्वर का। 10:00 सुनिएगा बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम आओ बच्चों। इसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा दादा दादी हमारे प्रेरणा स्रोत और परिवार की अमूल्य धरोहर। साथ ही सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम शासकीय प्राथमिक शाला शनिचरा डी बलौदा के बच्चों की प्रस्तुति। 10:30 पर कार्यक्रम नए तराने। दिन में 11:00 से शाम 5:00 तक सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। कल शाम 5:05 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें कल बेरा के गोठ में आपसे बातों का विषय रहेगा बाड़ी विकास ले किसान के विकास। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। शाम 5:35 और शाम 6:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करें ये सुने। श्रोताओं ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 बच्छर में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुए है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन और प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होय ऊपर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 बच्छर के ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहे हैं। उखर नेतृत्व में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुआ थे। उमन कहिन कि जनजातीय वर्ग बरघलो ये 12 बच्छर स्वर्णिम रहे हैं। ये दौरान 58 करोड़ ले ज्यादा जनधन खाता खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ में छू 2.5 बच्छर में 10 लाख ले ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं। ये मौका में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है विकास के संग विरासत लघलो बढ़ाए के काम करे है। उमन कहिन कि पाछू 12 बच्छर में भारत के अर्थव्यवस्था मजबूत हो है। 25 करोड़ लोगन मन हा गरीबी रेखा ले ऊपर आए हैं। एखरे संग दुनिया में भारत के सम्मान घलो बढ़े है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन। ये मौका में ओमन स्वच्छता कर्मी मन ले संवाद करत हुए स्वच्छ भारत अभियान में उखर समर्पण परिश्रम और योगदान की सराहना करीन। श्री सिंह कहिन कि स्वच्छता केवल अभियान न है बल्कि जन भागीदारी ले राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम है। ये मौका में केंद्रीय मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एखर बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कलेक्ट्रेट परिसर करा स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण घलो करें। उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात करें। इबेरा में मुख्यमंत्री कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना विकास काम मल्ला नवा गति प्रदान करे है। एकर पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली रायपुर में रेशम खादी ग्रामोद्योग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के समीक्षा करीन। केंद्रीय मंत्री अधिकारी मल्ला निर्देशित करीन कि अलग अलग योजना मन के माध्यम ले ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमी मन के वार्षिक आय 5 लाख रुपया तक पहुंचाए बर विशेष प्रयास करे जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुईन। ये मौका में मुख्यमंत्री एनएचएम कर्मचारी

0: मन के 33 दिन के हड़ताल अवधि के वेतन दे जाए के घोषणा करीन। ओमन एनएचएम कर्मचारी मन ला स्वास्थ्य सेवा के रीढ़ बतावत हुए किहीन कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र मन मा घलो स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाए मा उखर अहम भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र ले सम्मानित सुरक्षा बल के जवान मन ले आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा नवा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में मुलाकात कर उनला बधाई और शुभकामना दीन। ये दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा हा शौर्य चक्र ले सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक काम मन के सराहना करीन। गरियाबंद जिला में सुरक्षा बल के टीम हा तलाशी अभियान के दौरान माओवादी मन के एक ठन बड़े हथियार डंप बरामद करे हैं। मिले जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त टीम हा तलाशी अभियान पर निकले रहीन। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादी मन डहार ले लुका के रखे 4 किलो के आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करे हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाकी समाचार को ती। प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाहे। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नव प्रवेशी लयिका मन के तिलक लगा के स्वागत करे जाहे। ये मौका में विद्यार्थी मन ला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल के वितरण करे जाहे। उन्हें बोर्ड और स्थानीय परीक्षा में टॉप करैया लयिका मन ला घलो सम्मानित करे जाहे। स्कूल शिक्षा विभाग हा प्रदेश के स्कूल मन मा नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत समेत अलग अलग गतिविधि मन ला अनिवार्य रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे हैं। निर्देश में कहे गए है कि बिहनिया के प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और आने आने गतिविधि होगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के बेरा भोजन मंत्र और छुट्टी के बेरा राज्य गीत के सामूहिक वाचन कराए जाए। इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय हा 16 जून ले ही ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य करे जाए के निर्देश दे हैं। संचालनालय हा अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक मन ला डिजिटल माध्यम ले हाजिरी दर्ज करे बर कहे हैं। स्कूल मनमा VSK ऐप और कार्यालय मनमा बायोमेट्रिक प्रणाली ले उपस्थिति दर्ज हो ही। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिले ऊपर जून माह के वेतन रोके जा सकत है। उन्हें अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह ले प्रतिबंधित रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राजनांदगांव के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे ले सौजन्य मुलाकात करें। ये मौका में श्री साय भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरा पर T20 और वनडे टीम के उपकप्तान नियुक्त करे जाए ऊपर सुश्री नरवासे ला बधाई और शुभकामना दीन। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित करेगी। ये बच्छर के देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा प्रदान करेंगे है। उन्हें बब्बन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी ला और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव ला प्रदान करेंगे है। ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD News के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव रहीन। जांजगीर चांपा जिला के पतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला सड़क करा एक ठन ट्रेलर और पिकअप के बीच हुए टक्कर में पिकअप सवार दो जन युवक मन के मौत मौका में ही मौत हो गई। उन्हें 3 जन घायल हो गए। घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गए है। एकर आयोजन भारतीय कायाकिंग, कैनोइंग और छत्तीसगढ़ एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वाधान में करे जाते। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक

0: समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिला के चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सब्बो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। ए बखत के अंक मा गरियाबंद जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पे से मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 1-2 दिन के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश के संभावना जताए है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड और ओडिशा पहुंच गए है। मानसून के आगू बढ़े पर परिस्थिति सामान्य बने हुए है। उन्हें एक ठंडरोनिका मध्य प्रदेश उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए और गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 बच्छर में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुए है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन और प्रदेश के सब्बो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाहे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनी में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत फिल्म भीगी पलके से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, एम जी हशमत की रचना, जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, लुथरा खमरिया से नकुल शाह, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजा मरकाम, चंद्रपाल मरावी और साथ में हैं लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, पुतली कला कवर्धा से हमारे श्रोता साथी हैं राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, नानघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर और रितु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजबिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और इनके साथी हैं, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी। डीजे सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का ये गीत।

0: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https.awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउन

डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक

0: और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें ये सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और साथ में हैं धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सावतपुर से हमारे श्रोता हैं ऋषि सेन, रितेश कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू भाटिया, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित और ध्वनि गवाणकर, जालंधर से मीना कौर और मन्नत नूर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और साथ में हैं भुवन कामरी, भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म आईना का ये गीत। स्वर दिया है आशा भोसले और कुमार सानू ने, समीर सेन और दिलीप सेन का संगीत है और समीर की रचना है।

अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल रुखमणी, साहिल भारती बघेल, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित गर्वी और हिमांश चौहान, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, बुल्ढाना महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजपति, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका मिट्टा, बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, शेख रहीम मुन्ना और राबिया शेख, तखतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म महल का ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग के आखिरी गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण विनायक सेन, कोलगांव से पांडु चंदन, पांडुरंग कुम्हार, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, नवीन, सौरभ, साइना और इनके साथी हैं मैंडी शर्मा, पंजाब से ही सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, जलालाबाद से सुरेश गगनीजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और नियमित आहूजा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म उत्सव का ये गीत, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, शब्द रचना वसंत देव की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये भाग अब ही समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा।

0: और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उनके नेतृत्व में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि कहा, विरासत के साथ विकास या विकास के साथ विरासत, दोनों को लेने का काम किया। और वही नहीं, दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा किया। 32 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र से काम किया है।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता कर्मियों से संवाद करते हुए स्वच्छ भारत अभियान में उनके समर्पण, परिश्रम और योगदान की सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर के समीप स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कल रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनएचएम कर्मचारियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है।
3: सरकार आप लोगों के साथ, हम सब लोग खड़े हैं। आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे, उसका वेतन रुका हुआ है, तो मैं आज उसकी घोषणा करता हूं। आप लोगों के हड़ताल समय का जो वेतन है उसको सरकार देगी और आप सब लोग इसी तरह से आगे भी सेवा का काम करते रहें, आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है।
0: प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्य गीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने 16 जून से ही ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने को कहा है। स्कूलों में वीएसके ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन

0: रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में राजनांदगांव की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर श्री साय ने भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरे के लिए T20 और वनडे टीमों का उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर सुश्री नरवासे को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित सुरक्षा बल के जवानों से आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शौर्य चक्र से सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन जवानों की बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों का एक बड़ा हथियार डंप बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 4 किलो का आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष का देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा को प्रदान किया गया। वहीं बबन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी को और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD News के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव थे। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन कल 14 जून को होगा। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला मार्ग के पास एक ट्रेलर और पिकअप के बीच हुई टक्कर में पिकअप सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले के केरवा गांव से पिकअप से 5 लोग भिलाई जा रहे थे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गरियाबंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड और ओडिशा पहुंच चुका है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। वहीं एक द्रोणिका मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बनी हुई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
1: आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि और वर्षा का गतिविधि जो है आगामी 7 दिन तक भी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट आ चुका है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मॉनसून का एंट्री आगामी 2 से लेकर 3 दिन में होने की कंडीशंस फेवरेबल बन रहे हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार। ये आकाश

प्रादेशिक समाचार। अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का शेष भाग।

श्रोताओं, कार्यक्रम ई मेल करेगी सुने के इस भाग में आप सभी का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म आई मिलन की बेला से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शैलेंद्र की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और आयान, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया कुमार, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, फैजिका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु और इनके साथी हैं, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमारसाय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म आई मिलन की बेला का ये गीत।

कार्यक्रम के इस भाग का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म मिलन से। स्वर दिया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डौली, कबीर, देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, आरव और इनके साथी हैं, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्वनी, अमरदीप, टिंकू, मुस्कान और इनके साथी हैं, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग, भिलाई चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म मिलन का ये गीत।

0: फिल्म मिलन के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय है अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव-गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसके आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
2: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती।

0: थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
1: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
0: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
1: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है। वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
0: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
0: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है उनका नाम है दामजी भाई एंकर।

0: शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं, और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिशिल्डिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है, वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए, वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है, वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं, तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गाँव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4 बाई 6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीनें उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे, उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे, तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है, तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे, उसको भी उन्होंने यहाँ पर

0: जेटली ने किया और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है। उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपनी मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है। उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है। जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा। मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना। जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है। हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए। और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था। और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, पर मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा। मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी। इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि

0: मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: कोई एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दोनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके

0: हम बात करेंगे तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धुम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेकर नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज़ तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, हम सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे हैं, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये

0: समझना जरूरी हो जाता है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं, और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
1: पहले तो शशि जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
0: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
1: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
0: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात की है, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी

0: ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने में।
1: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं हैं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
0: खुल नहीं
1: खुलता,
0: सकता, बिल्कुल।
1: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
0: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से
1: देखिए,
0: देखते हैं?
1: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
0: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन

अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म कल होना हो से। स्वर दिया है अलका याग्निक और शान ने। जावेद अख्तर की रचना है। शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

0: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https.awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, सोनू निगम की आवाज में फिल्म फिजा का ये गीत। गुलजार की रचना है, अनु मलिक का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म फिजा का ये गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास के गाए गीत और गजलों को।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास के गाए गीत और गजलों को।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आज के कलाकार हैं पंकज उदास। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए सुनिए पंकज उदास के स्वर में।

पंकज उदास के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपनी साथी आरती का प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, आज कार्यक्रम में यादें और बातें हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार, नृत्य निर्देशक और अभिनेता की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध किया। वे थे प्रेम धवन। इनका जन्म 13 जून 1923 को अंबाला, पंजाब में हुआ था। आज उन्हें याद करते हुए प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। प्रेम धवन का बचपन अंबाला में बीता। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के जेल अधीक्षक थे। प्रेम धवन ने अपनी पढ़ाई लाहौर कॉलेज से पूरी की। गीत और संगीत के साथ उनकी रुचि अभिनय और नृत्य में भी थी। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1946 में फिल्म आज और कल में सहायक संगीतकार के तौर पर शुरू की। मुंबई में वे इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हुए और यहीं से जुड़ने के बाद वे मशहूर संगीतकार रविशंकर से संगीत सीखा। उन्होंने गीतकार के रूप में अपना पहला गाना धरती के लाल फिल्म के लिए लिखा था। आराम, तराना, आसमान, शोला और शबनम, काबुलीवाला, एक फूल दो माली, पूरब और पश्चिम जैसी कई फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे हैं।

प्रेम धवन एक गीतकार और संगीतकार के अलावा एक अभिनेता भी थे। उन्होंने दो फिल्मों में अभिनय भी किया। वे फिल्में थी लाजवाब और गूंज उठी शहनाई। उन्होंने वक्त, धूल का फूल, दो फूल, सहारा और नया दौर जैसी फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर काम किया था। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। कहते हैं प्रेम धवन बहुत ही भावुक थे। वे अपनी रचना तुझे सूरज कहूं या चंदा लिखते लिखते उनकी आंखें बार बार भर आती थीं।

प्रेम धवन और मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी लाहौर कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। कॉलेज की पत्रिका में साहिर गजल लिखते, वहीं प्रेम धवन अपने गीतों से मशहूर रहे। प्रेम धवन फिल्मों में गीत लिखने के साथ ही उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया। दो भीगा जमीन, नया दौर का गीत, उड़े जब जब जुल्फे तेरी में प्रेम धवन का कमाल का निर्देशन था।

प्रेम धवन ने कई प्रसिद्ध संगीतकारों अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, मदन मोहन और चित्रगुप्त जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी प्रमुख रचनाएं ए मेरे प्यारे वतन, छोड़ो कल की बातें, ए वतन हमको तेरी कसम, मेरा रंग दे बसंती, चोला जैसे गीत हैं।

प्रेम धवन की पत्नी का नाम उमा धवन था। उनकी एक बेटी है श्यामली धवन। प्रेम धवन ने अपने पारिवारिक जीवन को फिल्मों से अलग रखा। उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली मनोज कुमार अभिनीत फिल्म शहीद से। फिल्म शहीद के गाने आज भी सुपरहिट देशभक्ति गीतों में शामिल हैं।

प्रेम धवन को 1971 में नानक दुखिया सब संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 80 के दशक तक आते आते उन्होंने अपना गीत संगीत देना लगभग बंद कर दिया। वे एक गीतकार, संगीतकार और कोरियोग्राफर के रूप में अपनी शानदार पहचान बनाई थी। फिल्मों में किरदार को दिल से महसूस कर गीतों की रचना करने वाले प्रेम धवन का निधन 7 मई सन 2001 को मुंबई में हुआ। दिल को छू लेने वाले गीतों में प्रेम धवन की याद हमेशा बनी रहेगी। आइए सुनते हैं उनके लिखे गीतों को।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों, बातों और यादों के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा अब यही समाप्त होता है। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे थे मशहूर गीतकार प्रेम धवन को। अब दीजिए अनुमति अपनी साथी आरती को कार्यक्रम रजनीगंधा से। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए। हुए हैं, हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9.

2.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात 11 बजे तक हम विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। आइए जुड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दिया।

0: थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाला, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवद की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत

शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

आग में छम छम दीपक चांद बनाओ, पानी में भी आग लगा दो पत्थर को पिघलाओ, मेरे दम से जग में छम छम दीपक चांद बनाओ।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है, आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूं। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूं। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूबकर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज का तलबगार वो भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

0: पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबे जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वो ही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।
1: तेरे

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा की कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। समाचारों का अनुप्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम

0: में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 बजे तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said.

0: three match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है।